FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, और समाचारों के ठीक बाद यानी 6:05 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं।

इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनेगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

5 बजे छायागीत 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता, हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे छायागीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोपरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, क्या आज की इस कड़ी को वीणा सहस्त्रबुद्धे के लिए रखा जाए? अगर आप कहें
2: बिल्कुल
1: तो।
2: जरूर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे जी, आप वैसे कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर राव बोडस एवं उनके बड़े भाई पंडित काशीनाथ बोडस जी से शिक्षा प्राप्त की संगीत की, जो पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। और उसके अलावा भी उन्होंने पंडित बलवंत राय भट्ट जी, वसंत ठकार जी, पंडित गजानन राव जोशी जी, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोणकर जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी गायकी में इसीलिए ग्वालियर किराना जयपुर घराने की गायकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और गांधर्व महाविद्यालय के लिए भी बहुत काम किया। उन्हें गांधर्व मंडल की ओर से संगीत महोपाध्याय की पदवी से भी विभूषित किया और इतनी उत्तम रचनाएं उन्होंने बनाई हैं
1: जी।
2: तो वीणा जी की एक रचना मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, भोपाल तोड़ी राग, जो सुबह का राग है, एक

0: बंदिश है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: स्वागत है।
0: जो मध्यलय तीन ताल में है। तो पहले मैं आपको भूपाल तोड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं हमारे सुनने वालों के लिए। तो भूपाल तोड़ी ये राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है और तोड़ी अंग से गाया जाता है। इसकी जाति जो है वो औड़व है, मध्यम इसमें और निषाद ये दोनों स्वर वर्जित है
1: जी।
0: रे ग ध इसमें कोमल लगते हैं। दिन का पहला प्रहर इसका समय है और वादी इसका धैवत एवं संवादी गंधार है। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह राग बहुत ही सुंदर और सुबह के समय तो बहुत ही आनंददायक होता है।
1: तो अब कौन सी बंदिश आप प्रस्तुत करेंगे?
0: आदरणीय वीणाताई ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरो न कोई।
1: स्वागत है।

0: कलकत्ता ने बनाई हुई द्रुत तीन ताल में एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। तुम बिन कौन सहाय या जग में दूसरों न कोई।
1: स्वागत है।

0: वाह बहुत सुंदर। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धि की इस बंदिश को बड़ी ही सुंदरता से आपने प्रस्तुत किया कल्पना जी, और इस रचना को सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव के सागर में हिलोरे ले रहा था। और अब बताइए कि अब कौन सी रचना आप प्रस्तुत करेंगे या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: अब मैं वीणा ताई के आवाज में और उन्होंने बनाई हुई रचना राग दुर्गा में विलंबित एकताल का एक ख्याल सुनवाना चाहूंगी।
0: प्रस्तुत है जी ये रचना।

0: आज की इस कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के बारे में और उनकी बंदिशें सुनवाई। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये कड़ी भी बहुत पसंद आएगी और कल की कड़ी में कुछ और जानकारी, कुछ और बातें हम लेकर उपस्थित होंगे। कल्पना जी, आपको धन्यवाद। अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं आज की इस कड़ी में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से।

0: जाना।
1: अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद अली ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरी गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का ये गीत। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है।

0: सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में

0: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

उमा देवी की आवाज में चंद्रलेखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे एस राजेश्वर राव। लीजिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुनिए नदिया के पार फिल्म का गाना। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: में है दर्द क्यों?
1: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
2: ये इसलिए के जिंदगी में प्यार

0: क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

0: परेशानियां हैं क्यों बेताब दो दिलों में यूं जवानियां हैं क्यों
1: जरा कहना तो ये फिर क्यों
2: ये इसलिए

शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे संगीत से संवारा था सी रामचंद्र ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

साथियों, इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने गजरे फिल्म से लिया था। सुरैया की आवाज थी और इसे लिखा था गोपाल सिंह नेपाली ने और संगीत से संवारा था अनिल विश्वास ने। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे भी सुरैया ने गाया था और सिंगार फिल्म का गीत था। डीएन मधोक की रचना थी और संगीतकार थे खुर्शीद अनवर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आपके लिए एक विशेष सूचना है, सुनिए श्रोताओं। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 बरस पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकथॉन के लिए आप सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी।

तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप लाडली फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसे बहजाद लखनवी ने लिखा था और अनिल विश्वास ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए,
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: अब आज का हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: वीको टर्मरिक।

0: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के, इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: हेलो डॉक्टर, ये प्रोग्राम सुनिए हर शुक्रवार एवरी फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 9:30 से 10:30 तक। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर फ्राइडे मॉर्निंग आपसे होते हैं रूबरू। आप भी कर सकते हैं सवाल। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9462697568। तो याद रखिए, फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 9:30 पर प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

कर्ज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए ये सुनिए ना खुदा फिल्म का गीत।

खुदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाजें थी, निदा फाजली के बोल थे और खयाम की तर्ज थी। हम है राही प्यार की कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं।

घटेस्कधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। खूबसूरत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हेराही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी आशा भोसले की थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने को हैं, इस मौके पर आज यानी 8 मई को एक वॉकथॉन का आयोजन विविध भारती के द्वारा किया जा रहा है। इस वॉकथॉन के लिए हम सब जमा होंगे शाम को 5 बजे गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड यानी शिवाजी महाराज ग्राउंड के सामने, और वहां से विविध भारती तक एक वॉक किया जाएगा जिसमें विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो आप जरूर आइएगा गुराई 2 के पेप्सी ग्राउंड के सामने शाम को 5 बजे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए हम 5 फिल्म का गाना।

0: हम पांच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर VCK, CPI और CPIM के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुँच रोकी। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली BJP सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, JP नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित BJP विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के महासचिव E. Palaniswamy को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम TVK को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव A. Anbajgan ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ Khan के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक

0: मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम

0: वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही

0: Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: यह है आकाशवाणी उदयपुर, सवेरे के 8:30। लीजिए आप सुनिए, नमस्कार उदयपुर।

0: किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है।
1: बिल्कुल, और आज फिर से एक नया सवेरा है और इस नए सवेरे में डिजिटल एंड फन फ्राइडे लेकर हम हाजिर हैं। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ रश्मित
0: और मैं हूँ भगवती लक्षकार।
1: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। और एक बार फिर से हम ये बता दें कि आज क्या क्या होने वाला है।
1: बिल्कुल, देखिए आज डिजिटल एंड फन फ्राइडे है, तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करेंगे आज के दिन विशेष की बात करके। आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस, और उसके बाद स्मार्ट जीवन की बात करें तो फिटनेस ट्रैकर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स की जानकारी आज हम अपने श्रोताओं को देंगे।
0: बिल्कुल, और फिल्मी फ्राइडे में हम बात करेंगे इस सप्ताह की रिलीज फिल्में और OTT श्रृंखला की, और साथ ही साथ वैश्विक सिने जगत पर पुरस्कृत भारतीय फिल्में और उनकी बातें होगी और श्रोता संवाद भी होगा।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता आज के पूरे कार्यक्रम में क्या उन्हें पसंद आ रहा है उसके बारे में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उनकी जो व्हाट्सएप है वो हम शामिल करेंगे 9:10 से। और आज के हमारे नंबर्स जो होंगे वो होंगे 9462697568।

0: बिल्कुल सही है कि सहयोग करते रहिए, एक दूसरे का हाथ बटाते रहिए और साथ साथ चलते रहिए।
1: बिल्कुल भगवती, आपने गीत भी कुछ ऐसा ही प्ले किया, जो तुम ना हो। और कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा हो जो हमारी सहायता कर सके, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान के भीतर मानवता का भाव ज़रूर हो। क्योंकि अगर आप कोई किसी आपदा में है, कोई किसी परेशानी में है, तो आप में वो भाव हो कि आप उसकी हेल्प कर सकें।
0: बिल्कुल, इसीलिए मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को, और ये दिन उस महान व्यक्ति हेनरी ड्यूना की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना की थी।
1: बिल्कुल, देखिए हेनरी ड्यूनेंट का जन्म जो है वो 8 मई 1828 में हुआ। 1859 में सॉल फेरिनो की युद्ध में लगभग 40,000 घायल सैनिकों की उपेक्षा और तड़प को देखकर उन्होंने अपने अनुभवों को मेमोरी ऑफ सॉल फेरिनो नामक पुस्तक में लिखा, और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1863 में ये संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका उद्देश्य था मानव और सेवा की भावना को बढ़ावा देना, आपदा और युद्ध के समय मदद करने वाले स्वयं सेवकों का सम्मान करना, और लोगों को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड और सहायता के लिए जागरूक करना।
0: ये दिन न केवल सेवा और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में सहानुभूति, करुणा और एकता का भी संदेश देता
1: बिल्कुल
0: है।
1: देखिए, जो रेड क्रॉस जो है वो 7 मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ये सिद्धांत है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। और हर साल इस दिन की एक थीम होती है। इस बार की जो थीम है वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी हर परिस्थिति में मानवता को जिंदा रखना, युद्ध, आपदा और बीमारी जैसी कठिनाइयों में लोगों की मदद करना।

0: श्रोताओं, आईपीएल की अगर बात करें तो गुरुवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आखिरकार हार का सिलसिला खत्म करते हुए सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। टीम ने घरेलू इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। लखनऊ ने करीब एक महीने बाद जीत दर्ज की। टीम को पिछली जीत 9 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ मिली थी। इसके बाद खेले लगातार 6 मुकाबलों में टीम को हर बार हार का सामना देखना पड़ा और जीत के हीरो ओपनर मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने 111 रन बनाए, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक जड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने धमाकेदार शुरुआत की और बार बार रुकावट डालती बारिश के बीच मिचेल मार्श और आर्शिन कुलकर्णी ने 95 रन की ओपनिंग साझेदारी निभाई और अर्शिन के बाद मार्श ने पूरन जो कि 38 रन के साथ 70 रन जोड़े। इस दौरान उन्होंने 48 गेंदों में लखनऊ के लिए लीग इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी जड़ी।
1: बिल्कुल, देखिए टीम ने कुल रन बनाए 209 और 3 विकेट खोकर 19 ओवर में, क्योंकि बारिश की वजह से एक ओवर को कम कर दिया गया और आरसीबी ने शुरुआत में ही 9 रन पर दोनों ओपनर्स को गवा दिया और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए लक्ष्य को वो पार नहीं कर पाई। और आज की मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आज मैच होने वाला है।

0: चलिए तो अब कुछ लोकल अपडेट्स की बात करें तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि 10 मई को सुबह 11 बजे लोक कला मंडल में नाट्य कार्यशाला होने वाली है, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से नाट्य कला के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जो भी श्रोता इच्छुक हैं वो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा बागोर की हवेली में 9 मई यानी कल 9:30 से छाया चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें संत मावजी के 300 वर्ष पुराने चौपड़ों को पर्यटक देख सकेंगे। इसी के साथ एक खुशखबरी हमारे शहरवासियों के लिए है कि माता रोपवे का संचालन समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य है शहर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, परिवार के साथ आप नाइट टूरिज्म का पूरा आनंद ले सकते हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली है, और ये जो परीक्षाएं होगी यानी कल और परसों 9 और 10 मई को होगी, और इस परीक्षा में उदयपुर में कुल 59,319 अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करेंगे। और जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में 189 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 88 राजकीय और 101 निजी शिक्षण संस्थान शामिल है।
0: बिल्कुल भगवती, देखिए इतनी ज्यादा तादाद में अभ्यर्थी और उनके परिजन हमारे शहर आएंगे तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दिल्ली गेट, सभी स्थानों पर जाम लग सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन आम जन से भी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। उसी के बाद कुछ और लोकल हैपनिंग्स की बात करें तो जगदीश मंदिर में आज ध्वजा परिवर्तन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे ज्येष्ठी षष्ठी महोत्सव कहा जाता है। पूरे मेवाड़ में के आराध्य भगवान जगन्नाथ के धाम जगदीश मंदिर में आज आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। करीब 450 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए मंदिर में 79 फीट ऊंचे शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई जाएगी। ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के गरुड़ ध्वज का स्वरूप प्रतीक है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां आते हैं। तो आज सुबह 9 बजे विधि विधान से पूजा के बाद पुरानी ध्वजा उतारी जाएगी और नई ध्वजा फहराते हुए श्रद्धालुओं को इसके दर्शन कराए जाएंगे।

0: सो कुछ खूबसूरत गीतों के साथ नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं। और अब थोड़ी सी फिटनेस की बात करें, उससे पहले हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज FM रेडियो लेक सिटी से सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, जिसमें आज हमारे साथ होंगे रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरभ आनंद। तो अगर आप भी संबंधित विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9462697568 नंबर पर, और यही नंबर है लिसनर्स कनेक्ट का भी। तो आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, तो आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम ये कहें कि आज हमने विश्व रेडक्रॉस दिवस मना रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है। और साथ ही अब हम कुछ फिटनेस एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो अगर आप भी स्मार्ट हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि नहीं।
1: बिल्कुल, और स्मार्ट लिविंग में आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस ट्रैकर्स और हेल्थ ऐप्स के बारे में, क्योंकि देखिए कदमों, कैलोरी, हृदय गति और नींद को ये ट्रैक करते हैं, और ये हेल्थ इन्फिनिटी और कई सेवाओं के साथ 2 मिलियन प्लस खाद्य पदार्थों का कैलोरी काउंटर और 800 प्लस स्मार्ट उपकरणों से डेटा सिंक करने की सुविधाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए और एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल फिट की, जो कि एक बहुत ही सिंपल और फ्री ऐप है, जिसमें स्टेप्स, वॉकिंग और रनिंग ट्रैक ये करता है, हार्ट पॉइंट्स और मूव मिनट्स के जरिए आपकी एक्टिविटी दिखाता है। ये बिगनर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है।
1: और हेल्थीफाई मी की बात करें तो कैलोरी ट्रैकिंग और भारतीय आहार के अनुसार भोजन की योजना के लिए ये लोकप्रिय ऐप है।
0: बिल्कुल, और इसके बाद बात करते हैं माय फिटनेस पल की, जिसमें डाइट और कैलोरीज ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर है। फूड डेटाबेस के लिए इसमें सहायता मिलती है, एक्सरसाइज और डाइट दोनों को ये ट्रैक करती है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है भगवती, जिसका नाम है स्ट्रावा, जो कि रनिंग और साइकिलिंग के लिए बेस्ट है, GPS ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस करती है, दोस्तों के साथ कॉम्पिटिशन किया जा सकता है और अपनी जो गतिविधियाँ हैं उसको शेयर भी किया जा सकता है।
1: एक ऐप और है फिटबिट, ये आपके लिए एंट्री लेवल से लेकर उन्नत ट्रैकिंग तक की सुविधा प्रदान करता है। और एक है एप्पल फिटनेस, और ये ऐप है एप्पल उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके पास एप्पल फोन है ना, जो स्वास्थ्य और कसरत का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और आपको आपके हेल्थ के बारे में जानकारी देता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ एक और एप्लीकेशन आती है, वो है जे फिट, एक बेहतरीन वर्कआउट ट्रैकर और जिम ट्रेनर ऐप है, जो कि हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके एंड्रॉयड फोन को पर्सनल ट्रेनर में बदल देती है। ये 1300 से भी अधिक विस्तृत व्यायामों, रूटीन प्लानर और प्रगति को ट्रैक करने के लिए 50 लाख से भी अधिक डाउनलोड के साथ लोकप्रिय है, जो मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करती है।
1: हेल्थ इन्फिटी ये एक और ऐप है, और ये वजन घटाने, पानी के सेवन और कसरत के लिए एक ही ऐप में कई सुविधाएं आपको प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, कुल मिला के बात ये है कि हेल्थ मॉनिटरिंग जो ऐप्स होती हैं वो आपकी डेली एक्टिविटी पर नज़र रखती हैं, वेट लॉस और फिटनेस गोल अचीव करने में मदद करती हैं, स्लीप और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में सहायक होती है, मोटिवेशन मिलता है, डिसिप्लिन में आप रहते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो

0: गूगल फिट को यूज़ करें, अगर डाइट और फिटनेस चाहिए तो माई फिटनेस पल को यूज़ करें, और अगर रनिंग को पसंद करते हैं तो स्ट्रावा आपके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है।
1: तो बिल्कुल, इनका उपयोग करके आप अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं।

0: सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए 2 दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे मेरा खेत का आम है, तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
3: अपने विकास के कार्यों को

0: और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजना है चाहे केंद्र सरकार की योजना है उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
1: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल एसबीआई पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेर तहसील।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार।

0: चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार उदयपुर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
2: और मैं रश्मि। तो अब इस कार्यक्रम के दूसरे चंक में बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की।
1: तो आज दादी की शादी, ये जो है कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ एक फिल्म और आ रही है, वो है बाजिंग ख्वाटी
2: जी,
1: है ना। और मैं एक्टर नहीं हूँ, ये फिल्म भी आ रही है और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और अन्य कलाकार भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिंदी ड्रामा की, तो डुगडुग फिल्म आज और रिलीज़ हो रही है।
2: बिल्कुल। और साथ ही 8 मई को यानी आज ही रिलीज़ हो रही है गबरू फिल्म, जो कि सनी देओल की सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है। और अगर कुछ OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है ग्लोरी फिल्म और थैंक यू नेक्स्ट एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है।
1: साथ ही साथ लुक्खे भी आ रही है और ये प्राइम वीडियो पर आ रही है, और वाजा 2 ये जियो सिनेमा पर आएगी, और सिटाडेल सीजन 2 की शुरुआत भी आज होने वाली है। एक और जो है डकेत और लव इंश्योरेंस कंपनी इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5, ये भी आज रिलीज हो रही है।
2: देखिए, और आने वाले हफ्ते में अगर हम 15 मई की बात करें तो संजय दत्त और अमित साध की राजनीतिक ड्रामा फिल्म आने वाली है आखिरी सवाल। बिल्कुल। और अब देखिए कुछ कलेक्शन की, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें भगवती, तो राजा शिवाजी फिल्म जो है वो पहले वीकेंड में लगभग 10 करोड़ की कमाई कर चुकी है और कुल कलेक्शन करीब 11 से 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिल्म एक दिन की बात करें तो ओपनिंग थोड़ी सी कमजोर रही, अब तक लगभग 3 से 4 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। भूत बंगला फिल्म की बात करें तो तीसरे सप्ताह में भी मजबूत प्रदर्शन रहा है, भारत में लगभग 150 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ से भी अधिक कमाई कर चुकी है। और अब बात करते हैं धुरंधर 2 यानी द रिवेंज की, तो 7वें हफ्ते में भी शानदार कमाई उसकी जारी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 1785 करोड़ के भी पार बताया जा रहा है।
1: ओ श्रोताओं, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये आप जरूर बताइए, और हमारे फोन नंबर है 9462697568।

0: चलिए, अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा की, तो भारतीय सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना है ना। और भारतीय सिनेमा ने पिछले कुछ दशकों में वैश्विक मंच पर भी एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कई पुरस्कृत भारतीय फिल्मों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना पाई, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज और कला को भी दुनिया के सामने रखा।
1: बिल्कुल, तो हम कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं 1982 की फिल्म गांधी का, जिसे पुरस्कार मिला एकेडमिक अवार्ड में। 8 ऑस्कर इस फिल्म ने प्राप्त किए। खास बात इस फिल्म की ये रही कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये फिल्म विश्व भर में सराही गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर पहुँचाया।
0: ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये 2024 में आई थी और पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। और ये पुरस्कार प्रतिष्ठित है और ये पहली भारतीय फिल्म है जो मुंबई की दो नर्सों की कहानी बताती है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ बात करते हैं 1957 की फिल्म मदर इंडिया की, जिसके निर्देशक रहे महबूब खान। और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। भारतीय ग्रामीण जीवन और नारी शक्ति का सशक्त चित्रण इस फिल्म में नजर आता है। 1988 की फिल्म सलाम बॉम्बे का जिक्र करें तो इस फिल्म के निर्देशक रहे मीरा नायर। और पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में सम्मान, और ऑस्कर नॉमिनेशन भी इसे मिला। इस फिल्म की खास बात थी, मुंबई के सड़क बच्चों की कठोर सच्चाई को ये फिल्म दर्शाती है।
0: और ऑस्कर की ही बात करें तो RRR SS राजामौली की फिल्म गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा था।
1: बिल्कुल, और लगान फिल्म की बात करें जो कि 2001 में आई, आशुतोष गवारीकर इस फिल्म के निर्देशक रहे। ऑस्कर नॉमिनेशन इस फिल्म को मिला और खास बात इस फिल्म की थी, क्रिकेट और स्वतंत्रता संग्राम का अनोखा मेल इस फिल्म में बताया गया। और 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर को हम कैसे भूल सकते हैं, निर्देशक रहे डैनी बॉयल। और पुरस्कार मिला 8 ऑस्कर। और साथ ही खास बात इस फिल्म की रही, मुंबई की झुग्गियों से उठकर सपनों को सच करने की कहानी इस फिल्म में बताई गई।
0: और कान फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो जहां पर भारतीय फिल्म प्रदर्शित हुई, उसमें हमने ऑल वी इमेजिन एज लाइट की तो बात की ही है। साथ ही साथ हम बात करें 1946 में आई नीचा नगर की, तो भारत की पहली आधिकारिक एंट्री जिसने कान में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड प्रिक्स जीता था।
1: और बिल्कुल, साथ ही बात करते हैं द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म की, जो कि जिसमें पुरस्कार मिला ऑस्कर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। और इस फिल्म की खास बात रही, इंसान और प्रकृति के रिश्ते को दर्शाने वाली ये बहुत ही भावात्मक कहानी थी। अगर श्रोताओं ने नहीं देखी है तो जरूर देखें।
0: और पाथेर पांचाली सत्यजीत रे की ये मास्टरपीस कान में सर्वश्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी, जो कि 1955 में आई थी।
1: बिल्कुल, साथ ही 1957 की फिल्म वी शांताराम द्वारा निर्देशित दो आंखें 12 हाथ की बात करें भगवती, तो बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिल्वर बियर और OCIS पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया।
0: द लंच बॉक्स की बात करें तो 2013 में आई थी रितेश बत्रा की ये फिल्म, और कान फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स वीक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड इसने जीता था।
1: और इसी के साथ 1960 की फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म रही अनुराधा, जिसमें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार के लिए इस फिल्म को नामांकित किया गया।
0: कोर्ट आई थी 2014 में चैतन्य तामाणे की मराठी फिल्म थी, जिसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लॉयन ऑफ द फ्यूचर पुरस्कार और कई अन्य

0: जो पुरस्कार जीते थे।
1: और इसी के साथ श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म निशांत की बात करें जो कि 1975 में आई। इस फिल्म ने कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी और पुरस्कार के लिए इस फिल्म को भी नामांकित किया गया।
0: और हाल ही में आई है बुंग फिल्म, लक्ष्मी प्रिया देवी द्वारा निर्देशित ये मणिपुरी फिल्म है और 2026 में बाफ्टा पुरस्कार से ये सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार इसने प्राप्त किया।
1: बिल्कुल, और देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर हम बात करें बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम की जो कि 1966 में आई, मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार के लिए इसे नामांकित किया गया।
0: और ऑल दैट बिट्स 2022 में आई थी, शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसने कान में द ले ऑयल डी और ये जो गोल्डन आई है पुरस्कार उसने जीता।
1: बिल्कुल, इसी के साथ 1989 की फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो, ये है सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म जिसे टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो मतलब ये जो फिल्में हैं ये साबित करती हैं कि भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति, भावना और सामाजिक सच्चाइयों का वैश्विक प्रतिनिधि करती है।
0: साथ ही साथ यथार्थवादी कहानियों पर ये जो है फिल्में आई है, क्षेत्रीय सिनेमा का दबदबा भी इससे सिद्ध होता है और महिला केंद्रित और सशक्तिकरण की जो जागरूकता है वो भी यहाँ पर नजर आती है।
1: बिल्कुल, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज भारतीय फिल्में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सम्मान प्राप्त कर रही हैं।

0: चलिए, तो बहुत सारी बातों के साथ साथ हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप भी आने लगे हैं भगवती। तो रुखसाना बानो रहमान कॉलोनी उदयपुर की हमारी श्रोता हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रही हैं और सभी जानकारियां उन्हें पसंद आ रही हैं। साथ ही बहादुर चक्रवर्ती जो हैं वो रामशिरिया तहसील से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें हमारे सभी प्रोग्राम को वो तल्लीनता से सुनते हैं और तारीफ भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और छत्रपुर बुंदेलखंड से हमारे एक श्रोता है और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी उदयपुर से आपके सारे प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं और मेरा पता है बस स्टैंड रमोटोरिया तहसील गुवारा जिला छत्रपुर है ना। और ये कह रहे हैं कि आपके सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपका नियमित श्रोता हूँ और आपका हर प्रोग्राम बड़े चाव से सुनता हूँ।
0: बिल्कुल, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं। साथ ही हिरणबगड़ी सेक्टर 4 के सुशील यादव और रेणु यादव हमारे जो श्रोता हैं वो हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि समय न जाने कैसे निकल जाता है, यानी कार्यक्रम का समय कुछ और अधिक होना चाहिए। तो चलिए, आपकी ये बात हम अपने अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल और कोई मैसेज है?
1: बिल्कुल, मैसेज लगातार मिल रहे हैं लेकिन इस गीत के बाद।
0: बिल्कुल।

ये हमारे एक और श्रोता है जो है गगनदीप थाती, तृप्ता कुमारी थाती, टोटोवाल नवाशहर पंजाब से ये हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और इनको प्रोग्राम में बताई जानकारियाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही साथ शांति रावत ये भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये कहते हैं कि आपके बजाए गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो हमने पहले जिनका संदेश पढ़ा था, उन्होंने फिर से लिखा है कि मेरे गांव का नाम टोरिया, तहसील गुवारा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड है और बहादुर चक्रवर्ती इन्होंने जो है हमें ये संदेश भेजा है। साथ ही साथ कहा है कि राजस्थानी आवाज़ में भी कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाए। तो बिल्कुल हम आपके संदेशों को जो है हमारे अधिकारी तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मैसेज किए और अब कार्यक्रम का जो है वक्त होता है। तो अब दीजिए आपके दोस्त भगवती लक्षकार और मेरे साथ रश्मीत को अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as one.

0: सो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी। आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन आज की मॉर्निंग लोकल विंडो में। सो गुड इवनिंग एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं मॉर्निंग लोकल विंडो में। शुक्रवार का दिन है तो सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है हेलो डॉक्टर। 10:30 पर आप सुनेंगे हिट परेड और 11 बजे का वक्त रहेगा आपकी फरमाइशों पर आधारित प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस का। तो आज का सबसे पहला प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है GBS जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वास उदयपुर।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
3: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
3: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।

0: हेलो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रोबोटिक एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरव आनंद। तो अगर आप भी संबंधित विषय पर हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9462697568 नंबर पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान और तकनीक का निरंतर विकास हो रहा है। हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश अब विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो रहा है। और अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो बहुत से नवाचार हुए हैं। तो आज हमारे साथ रोबोटिक एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरव आनंद है। और आज के इस कार्यक्रम में हम अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, हर्निया के साथ साथ मोटापे की सर्जरी यानी बैरियट्रिक सर्जरी की भी बात करेंगे। आप भी भागीदार बन सकते हैं 9462697568 नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो आइए आज के हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर शो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरव आनंद, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हर्निया स्पेशलिस्ट एंड बैरियट्रिक सर्जरी आल्सो डन बाय मी। आज हम कुछ नए विषय पर बात करना चाहते हैं। इसमें मैं यहाँ के लोगों को इस बात से

0: अवगत कराना चाहता हूं कि हर चीज़ के लिए दवा जरूरी नहीं होती, हर चीज़ के लिए दवा इनफ नहीं होती। आपको एक समय दवा को छोड़नी चाहिए और सर्जरी के बारे में सोचनी चाहिए। हम फीवर होता है टैबलेट ले लेते हैं, इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, शुगर है इंसुलिन ले लिया, बीपी है बीपी की दवा ले लिया, बट दवाई केवल बीमारी को कंट्रोल करती है, एक दवा बीमारी को क्योर नहीं करती। दैट्स वाई हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है। सर्जरी इज़ अ पावरफुल ब्रांच ऑफ हीलिंग। जब आप सर्जरी की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत डरावनी बात है, हो सकता है कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन हो, बट आज की मॉडर्न सर्जरी डिजीज़ को भी रिमूव करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करती है।
1: बिल्कुल सर, तो आज का जो टॉपिक आपने हमें सेंड किया वो टॉपिक है व्हेन मेडिसिंस आर नॉट इनफ द रोल ऑफ सर्जरी एंड राइज ऑफ रोबोट्स। तो आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं तो हम पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यों ना जिक्र हम अपेंडिक्स का करें जो कि बहुत कॉमन होता है।
0: अपेंडिक्स हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि हमारी बड़ी इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, तो जब भी इसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं या इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो इसके अंदर सूजन आ जाती है जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खा लीजिए, कितनी भी दवाई ले लीजिए, बट एक बैडली इन्फेक्टेड एक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। आप इसके लिए रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का उपयोग कर सकते हैं। पहले ज़माने में जो सर्जरी होती थी उसमें बड़े चीड़े लगते थे, काफ़ी दर्द होता था, लंबे दिनों तक हॉस्पिटल में रुकना होता था, डिलेड रिकवरी होती थी। आज जो मॉडर्न सर्जरी है ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, आपके शरीर पे छोटा से छोटा की होल बना के, मतलब लेस पेन होता है इसमें, स्मॉलर स्कार, बहुत छोटे से चीड़े लगते हैं, क्विक रिकवरी है। और सबसे अच्छी बात आज के मॉडर्न सर्जरी की, आप अपने काम पे जल्द वापस जा सकते हैं, आपको घर पे बैठने की, हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है, सर्जरी हुई एंड यू आर रेडी टू गो।
1: जी सर, तो ये अपेंडिक्स की बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं एक आम जन में, उसे कैसे पता लगता है कि ये उसका ही दर्द है, मामूली पेट दर्द है, कैसे डिफरेंस करें?
0: सर्जरी अपेंडिक्स की जो दर्द होती है वो पेशेंट्स के राइट साइड लोअर एब्डोमेन में दर्द होती है और एक सीवियर पेन होती है, आप अपने पैरों को मूव नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपकी जो लैटरिंग है वो पतली आ रही हो, पेशाब में जलन हो रही हो, उल्टी हो रही हो, बुखार आ रहे हो, तो अपेंडिक्स में दर्द अगर आपके राइट साइड लोअर एब्डोमेन में हो रही है तो आपको सोचना चाहिए कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। और अपेंडिक्स का दर्द जब भी आपको हो आप फटाफट हॉस्पिटल आएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अपेंडिक्स बिल्कुल सूजन है, इसकी डायमीटर काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो आपको सर्जरी के बारे में सोचनी चाहिए। एक अपेंडिसाइटिस दवा से ठीक नहीं हो सकता।
1: जी सर, तो अगर सर्जरी करवा ली जाती है तो उसके बाद क्या ध्यान रखना पड़ता है इसमें?
0: सर्जरी के बाद कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है, सर्जरी हुई और यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, आप खाना खा सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, घर जा सकते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन बाय 2 days।
1: ओके, मतलब सर्जरी नाम ही बड़ा है, बाकी इजी गोइंग है।
0: ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न सर्जरी। आज जो मॉडर्न सर्जरी हमारे पास है इसमें हम पेशेंट्स के रूट प्रॉब्लम, पेशेंट की जड़ पे जाके काम करते हैं कि आपको एक अच्छी जिंदगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके।
1: जी जी सर, तो अब बात करते हैं गोल्ड ब्लेडर की सर्जरी की, जिसमें मतलब हम पथरी को भी अगर इन्वॉल्व करें, उसमें सूजन और इन्फेक्शन जो होता है या फिर पेट दर्द होता है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, क्या लक्षण रहते हैं?
0: इसमें भी पेशेंट की राइट साइड में ही दर्द होते हैं, बट राइट साइड में दर्द, ये जो दर्द है ऊपर की तरफ होती है और पेशेंट्स की पीछे पीठ में दर्द होते हैं, राइट शोल्डर्स में पेन होते हैं। तो जब भी आपको गॉल स्टोन्स लगे और आपको लगे कि दर्द हो रहे हैं, मेरे को खाना पचने में दिक्कत हो रही है, मेरे को पेट में बार बार दर्द रह रहा है, अगर आप अभी प्रेग्नेंट थे और प्रेगनेंसी के कुछ दिन के बाद आपको दर्द शुरू हो गया, तो ये सारे गॉल स्टोन्स होने के लक्षण हैं। गॉल स्टोन में होती है कि गॉल ब्लैडर अपने नॉर्मल फंक्शंस करना बंद कर देता है। नॉर्मल इंसानों में गॉल ब्लैडर जो होता है पित्त को कंसंट्रेट करता है, बट अगर किसी बंदे में गॉल स्टोन बन रहा है तो गॉल स्टोन बन रहा है तो उसका गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए उसमें गॉल स्टोन बन रहे हैं। तो आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। आप

0: आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए अगर कोई डॉक्टर कहता है मैं आपको दवाई दे दूंगा इससे ये पथरी घुल जाएगा, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं होती जिससे पथरी घुल जाए।
1: कई बार हम सुनते हैं कुछ देसी इलाज या फिर कुछ ज्यादा पानी पी लीजिए उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल होता है?
0: ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। रीनल स्टोन जो बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ा है वो कई बार ज्यादा पानी पीने से निकल सकता है, बट कोई भी गॉल स्टोन या रीनल स्टोन बिना सर्जरी के नहीं निकल सकते हैं। आपको सर्जरी करानी ही होगी। अगर आप देर करते हैं तो आप उसके कॉम्प्लिकेशन, अगर अपेंडिक्स की दर्द है आपने सर्जरी नहीं कराई, आप उसके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर गॉल स्टोन है आप उसकी सर्जरी नहीं करा रहे हैं, आप उसके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर गॉल ब्लैडर का थिकनेस बढ़ जाता है आपके टाइम टू टाइम, गॉल ब्लैडर के स्टोन की साइज टाइम टू टाइम बढ़ जाती है, कल को ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो आपको अपेंडिक्स हो, गॉल स्टोन के पेन हो, इन दोनों ही पेन में सर्जरी मैंडेटरी है, आप सर्जरी से बच नहीं सकते
1: जी। सर तो ये आप सर्जरी की जो बात कर रहे हैं, अगर हम आपके पास सर्जरी के लिए आते हैं तो इसके पहले का क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान एज अ मतलब पेशेंट हमें रखना पड़ता है?
0: सर्जरी कराने से पहले आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे पास आइए और मैं आपको सर्जरी करके नेक्स्ट डे आपको घर या उसी दिन शाम में आपको घर भेज दूंगा। हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था है जो कि पूरे इस रीजन में यहाँ से 200 किलोमीटर के रेडियस में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई इन बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर सौरभ आनंद खुद दिल्ली अपोलो से यहाँ पे आया हूँ आपकी सेवा के लिए। इससे पहले मैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करता था। तो आज मैं इस पूरे उदयपुर और इसके आसपास के रीजन को रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ। रोबोटिक सर्जरी में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें रोबोट कुछ नहीं करता है। रोबोट केवल और केवल डॉक्टर्स को मदद करता है, सर्जन ही हर सर्जरी करता है। सर्जन्स के जो हाथ के मूवमेंट्स हैं उसको रोबोट्स बिल्कुल माइक्रो मूवमेंट्स में टर्न करता है। तो रोबोट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय अ सर्जन, रोबोट नॉट परफॉर्म सर्जरी।
1: ओके, तो ये जो मिथ है कि भाई रोबोट सर्जरी करते होंगे तो वो एक मिथ ही है, मतलब करते सब कंट्रोल डॉक्टर्स ही हैं। और आप वाकई में उदयपुर के लिए वरदान है कि हमारा अब दिल्ली और अहमदाबाद जाने के लिए हम घूमने के लिए जाएं लेकिन डॉक्टर्स के पास न जाएं। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हर्निया। तो स्पेशली इसमें हम इन सीजनल और इंग्वाइनल हर्निया के बारे में स्पेशली आपसे जानना चाहते हैं।
0: देखिए केवल इंसीजनल और इंग्वाइनल हर्निया ही नहीं होते, हर्निया बहुत तरह की होती है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, वेंट्रल हर्निया, हाइटस हर्निया, स्पीजिलियन हर्निया। तो शरीर में अगर आपको कहीं पे भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया या आपने सीटी स्कैन कराया और उसमें वर्ड आता है हर्निया, इट मीन्स आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी
1: जी।
0: क्योंकि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि हर्निया को ठीक कर सके। हर्निया में क्या होते हैं, आपके बॉडी के जो मसल्स वॉल होते हैं, वॉल आपकी डिफेक्ट हो गई, आपके वॉल में स्ट्रेच हो गई। अब आप समझो कि अगर आपके शरीर के वॉल में स्ट्रेच्ड आ गया और उसके अंदर होल हो गए, तो ऐसी कोई दवाई भगवान ने या साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं बनाई है जो उस होल को बंद कर दे। होल को बंद करने के लिए केवल और केवल सर्जरी ही है। अगर आप हर्निया की सर्जरी डिले करते हैं फिर आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। हर्निया की जब होल्स हो जाते हैं फिर उसके अंदर इंटेस्टाइन अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर फैट अंदर जा सकते हैं, ब्लड वेसल्स अंदर जा सकते हैं। जब हाइटस हर्निया होते हैं तो उसमें स्टमक अंदर चला जाता है। डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है तो पूरी के पूरी स्टमक के पार्ट्स अंदर चले जाते हैं, तो कभी ना कभी ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। फिर आपको बिल्कुल इमरजेंसी एक्यूट कंडीशंस आ जाएंगी। हो सकता है कि आपके बॉवेल्स काटने पड़े, हो सकता है कि कोई अंग जो उसमें फंस के उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई उसको हटाना पड़े। तो जब भी आपको हर्निया दिखे आप बिल्कुल सर्जरी के बारे में सोचें कि हर्निया सर्जरी से ही ठीक होता है
1: जी। मतलब ये कुल मिला के ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें दवाइयां कुछ कर ही नहीं सकती, केवल आप सर्जरी से ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही शरीर से जुड़ी परेशानियों की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ आनंद, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अगर हमारे श्रोता भी संबंधित विषय पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 9467568 नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर हमारे इस प्रोग्राम का रूल है कि हम थोड़ा सा म्यूजिकल इंटरटेनमेंट भी करते हैं, अगर आप कहें तो एक सॉन्ग सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो खुशियों को ढूंढने की बजाय खुश होकर रहना ज़रूरी है उदयपुर, और अगर आप खुश तब भी हो सकते हैं जब आप फिट एंड फाइन हो। और आप सभी को फिट रखने के लिए प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमारे साथ हैं रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरभ आनंद। सर, इस ब्रेक पर जाते टाइम हमारे बीच में एक श्रोता हैं जो एक सवाल लेकर आए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि उन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही वो लिखते हैं कि दस्त का बार बार आना किस बात का लक्षण है, क्या आप बता सकते हैं कि ये हर्निया का भी कोई कारण हो सकता है क्या, लूज मोशंस अगर बार बार होते हैं तो?
1: नहीं, लूज मोशन बार बार होना हर्निया का कारण नहीं हो सकता। हर्निया में बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग होती है। जब आप खांसी करते हैं तो वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, जब आप चलते हैं फिरते हैं तो आपकी वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जब आप लेटते हैं तो वो स्वेलिंग आपकी कम हो जाती है। तो हर्निया का सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है कि आपके शरीर में कहीं पर कुछ फुला हुआ दिखाई देगा, कुछ उभड़ा हुआ दिखाई देगा। आपके

0: मान लीजिए कि अम्बिलिकल हर्निया है, वेंट्रल हर्निया है, आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े के ऊपर से आपको फूला हुआ दिखाई देगा, कॉस्मेटिकली भी वो बेटर नहीं दिखाई देगा। तो हर्निया की सबसे बड़ी सिम्टम्स है कि कहीं पे कुछ फूला हुआ हो, कफ के साथ वो बड़ा होता हो, चलने फिरने पे बड़ा हो जाता हो, जब आप लेटते हैं तो वो ठीक हो जाता हो या शरीर के अंदर चला जाता है।
1: ओके, तो मतलब एक तरह से हमारी त्वचा पर कुछ पैचेस टाइप के नजर आते हैं क्या हर्निया से?
0: नहीं नहीं, वो पूरा का पूरा एक स्वेलिंग आएगा, गोल सा स्वेलिंग आएगा बिल्कुल। आपके कुछ इंटरनल्स हर्निया होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, वो केवल हमें सीटी और एमआरआई पे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं डायफ्रेगमेटिक हर्निया की बात कर रहा था, तो वो हर्निया हमें सीटी स्कैन पे दिखाई देते हैं, वो नॉर्मली कोई उसमें आपको स्वेलिंग नहीं दिखाई देती है। सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है आपके अंदर, उसमें हो सकता है कि खाना आपका नहीं पचता हो, खाना में जो आपकी आंत है उसके अंदर रुकावट महसूस होता, तो ये सब डायफ्रेगमेटिक हर्निया के पहचान है। और जो हमारा हाइटस हर्निया है उसमें है कि आपको मुँह में गंदा पानी आएगा, खट्टी ढकारे आएंगी, बार बार आपको ब्लोटिंग होगी, तो ये जो पहचान है ये आपके हाइटस हर्निया के हैं।
1: ओके सर, तो ये जो हमारे श्रोता थे वो थे कमल कुमार और सीमा जी हैं जो कि 65 साल की हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। सर आगे हम बढ़ते हैं, एक परेशानी ये भी होती है एसिड रिफ्लेक्शन की, जिससे मतलब मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली भी कई बार हम इससे दो चार होते हैं, और मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ पसंद नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि मैं होम्योपैथिक ले लूँ, कुछ वक्त तक लेती हूँ तो ठीक

0: और सीमा जी हैं जो कि 65 साल की हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। सर आगे हम बढ़ते हैं, एक परेशानी ये भी होती है एसिड रिफ्लेक्शन की, जिससे मतलब मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली भी कई बार हम इससे दो चार होते हैं, और मुझे एलोपैथिक दवाइयां पसंद नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि मैं होम्योपैथिक ले लूँ, कुछ वक्त तक लेती हूँ तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से हो जाता है, तो ये क्या परेशानी है इसके बारे में?
1: यही सिम्टम्स जो हैं, ये हाइटस हर्निया के सिम्टम्स हैं, इसी में मैं बात कर रहा था कि आपको खट्टी ढकारें आएंगी और आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स आपको ढेर सारा पीपीआई दे देंगे कि ये एंटा एसिड्स आप खाइए, आप उसको लेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा, बट जब आप इंडोस्कोपी कराएंगे तो इंडोस्कोपी में आपको दिखाई देगा कि आपके शरीर में हाइटस हर्निया बन रहा है, वो ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा, ग्रेड 4 होगा। तो जब भी आपको हाइटस हर्निया ग्रेड 2 से ऊपर दिखाई देने लगे तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए कि सर्जरी करानी ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा आपके स्टमक का ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ जाते जाएगा, आपके छाती के अंदर चला जाएगा, तो आपको हाइटस हर्निया की सर्जरी, जिसको फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, ये रोबोटिक तरीके से बहुत बेहतरीन, इट्स लाइक एन आर्ट, जैसे आप पेंटिंग करते हो वैसे हमारी सर्जरी होती है। जब आप हमारी ओटी में आओगे और सर्जरी देखोगे तो आपको फील होगा कि इट्स लाइक एन आर्ट, समवन इज डूइंग एन आर्ट, तो सर्जरी इज एन आर्ट। तो जब भी आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में सोचते हो, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सर्जन्स को 3D विजन दिखाई देती है। जब आप मूवी हॉल में जाते हो, ग्लव गूगल्स लगाते हो तो आप 3D मूवीज देखते हो, तो सेम सर्जन्स को 3D विजन्स दिखाई देते हैं रोबोटिक सर्जरी में। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन्स जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो उनकी ट्रेमर फिल्ट्रेशन हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट बिल्कुल बेटर होती है, कोई रक्त स्राव नहीं होता है। आप अपेंडिक्स की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी जब रोबोटिक कराते हो तो आपके बॉडी में नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड लॉस होता है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। और रोबोट्स की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि नैरो से नैरो बॉडी के पार्ट में जाके ग्रेटर प्रिसीजन के साथ सर्जरी करता है। तो अगर आप फंडोप्लाइकेशंस कराते हो, हर्निया की सर्जरी कराते हो, तो आपको समझो रोबोटिक सर्जरी में बेटर रिजल्ट मिलते हैं।
0: जी सर, तो सर्जरी के लिए एक आर्ट शब्द को यूज़ करना ही हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है, ऐसे तो सर्जरी नाम से हमें डर ही लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आर्ट है तो वाकई में ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ एक्साइटिंग होता होगा।
1: ऑफ कोर्स, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि लोगों को इस बात से अवगत करा सके कि सर्जरी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर को सर्जरी की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल आगे आकर सर्जरी कराने की बात करें, क्योंकि सर्जरी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकता है
0: जी।
1: और सर्जरी जो है इलनेस और रिकवरी के बीच में एक ब्रिज है। अगर आप बीमार हैं और आप ठीक होना चाहते हैं तो उसके बीच में सर्जरी एक वर्ड है जो कि आपको टोटली रिकवर कर सकता है
0: जी।
1: मैं पहले भी बोला था कि मेडिसिन आपको क्योर नहीं कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बट सर्जरी आपको क्योर कर सकती है।
0: जी सर, अब आगे अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है रेक्टोपैक्सी। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: रेक्टोपैक्सी में क्या होता है कि आपकी लैटरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, और ये जनरली यंग एज में भी देखा जाता है और ओल्डर एज में भी देखा जाता है। तो जब आपकी लैटरिन, आप सुबह सुबह वॉशरूम जा रहे हैं और आपका पूरा का पूरा लैटरिन का रास्ता बाहर निकल रहा है, तो इसमें होता है कि आपको रेक्टोपैक्सी नाम की सर्जरी करानी पड़ती है, जिसमें हम पूरे की पूरे रेक्टम को ऊपर पेट के अंदर ला के उसको फिक्स करते हैं। ये भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि ये एक नैरो पार्ट की सर्जरी है। तो और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी लैटरिन के रास्ते की प्रॉब्लम है, जैसे कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है, पाइलोनाइडल साइनस है, ये सभी बीमारियाँ केवल और केवल सर्जरी से ठीक हो सकती है। अगर कोई इंसान सोचता है कि हम आयुर्वेदिक दवाई ले लेंगे, किसी के पास जड़ी बूटी ले लेंगे, तो उसकी पाइल्स कुछ समय के लिए कंट्रोल हो सकती है बट वो ठीक नहीं हो सकती। अगर आप किसी रोड साइड डॉक्टर से जाके सर्जरी करा लेते हैं, जिसको वो कहते हैं कि बाबा सिर भगंदर ये वो, तो क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा तो ठीक ही नहीं हुआ, हमारा रास्ता छोटा हो गया, परेशानी होती है। तो आप कहीं इधर उधर नहीं जाएं, एक क्वालिफाइड स्किल्ड सर्जन के पास आएँ और बिल्कुल पाइल्स, फिसर, फिस्चुला, हेमरॉइड्स, पाइलोनाइडल साइनस, एब्सेस, इन सब के लिए सर्जरी ही पहली चॉइस है।
0: जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाइल्स और फिशर की बात करें तो उसमें तो मोस्टली लोग जो है वो दूसरी तरह के आयुर्वेद की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं, तो क्या आपके सामने कभी कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जो और बुरी हालत में आ जाते हैं आपके पास ये सब कुछ करके?
1: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि कब्ज से

0: परेशान होते हैं, ऐसी कई सारी बहनें आती हैं, माताएं आती हैं जो कि मतलब काफ़ी परेशान है, खून निकल रहा है शरीर से, रोज़ वॉशरूम जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। कई लोग शर्म से नहीं इलाज कराना चाहते हैं कि हमको शर्म आ रही है, बट शर्म से कहीं ज़्यादा है कि आप स्वस्थ रहें। तो पाइल्स, फिसर, फिस्चुला, पाइलोनाइडल साइनस, इन सब के लिए सर्जरी ही पहली सोच है। आप सर्जरी कराएं और आप बिल्कुल बेटर फील करेंगे कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी आपको फील होगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई।
1: जी सर, अब बात करते हैं एक ऐसी सर्जरी की जो कि बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पर, क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में गैस्ट्रिक बाईपास जो सर्जरी है या फिर बैरियट्रिक सर्जरी जो है उसके बारे में बताएं, क्योंकि इसके लिए तो मोस्टली हम उदयपुर पर तो विश्वास कम ही करते हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि हमें दिल्ली या अहमदाबाद ही जाना चाहिए, या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं इस तरह की सर्जरी करवाने के लिए, क्या कहेंगे आप?
0: एक समय था आज से 10 साल 12 साल पहले जब बैरियट्रिक सर्जरी एक फैंटेसी वर्ड थी, बट आज के डेट में ये काफ़ी कॉमन हो गया है और काफ़ी पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लोग जो हैं लाइफ स्टाइल्स में ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पहले की तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं और मोटापा जो है वो बढ़ते जा रही है। आप BMI वर्ड्स जानते होंगे, तो BMI अगर आपकी बॉडी की 35, 36, 40 के अप्रोक्स पहुंच रही है तो आपको बैरियट्रिक सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। मोटापा एक बीमारी का जड़ है, आपको इससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, फैटी लीवर, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन और इवन की कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डाइट्स ट्राई करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ लोग मोटापा कम करने की दवाई लेते हैं, कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, बट इससे क्या होता है, थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है। आपके अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो स्टिल कंटिन्यू टू स्ट्रगल, बायोलॉजिकली आप फिट नहीं हो पाते इन सारी चीज़ों को ट्राई करके। तो जब आपको ऐसा फील हो कि आप बैरियट्रिक सर्जरी करेंगे तो आपको सबसे बड़ी फायदा होगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। तो आप बैरियट्रिक सर्जरी आके करा सकते हैं, बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, मुश्किल से 45 मिनट लगते हैं। कई तरह के बैरियट्रिक सर्जरीज होते हैं, हम पेशेंट्स को देख के जज करते हैं कि इनको किस तरह की बैरियट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है।
1: जी सर, प्रोसीजर तो बहुत छोटा है लेकिन उस प्रोसीजर तक पहुँचने से पहले के जो विचार हैं वो बहुत लंबे होते हैं। मुझे लगता है बहुत सारा डिस्कशन होता होगा घरों में अगर इस तरह की सर्जरी करवानी हो तो। आप कैसे जो पेशेंट हैं या जो मोटे जो व्यक्ति हैं आपके पास आते हैं, कैसे उनको आप काउंसिल करते हैं कि आप सर्जरी की तरफ जाइए?
0: नहीं, जो लोग 125 केजी, 135 केजी, 155 केजी, इवन कि मैंने तो 180 केजी के लोगों के ऑपरेशंस किए हैं, तो आप सर्जरी जैसे ही 150 केजी के पेशेंट्स पे करते हैं, अगले 6 महीने के अंदर उसके वजन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 केजी का रिडक्शन आता है। ऐसे वर्ल्ड में कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो कि आपको 6 महीने में 45 केजी वेट रिड्यूस करके दे। बैरियट्रिक सर्जरी एक सेफ सर्जरी है और पेशेंट्स को इससे जो उनके अंदर की शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, इनफर्टिलिटी अगर किसी महिलाओं को हो रहा है, किसी महिलाओं के घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये हर चीज़ें वजन कम करने की सर्जरी से ठीक हो सकती है।
1: जी बट सर, एक बात है ना कि अगर मोटापा होता है तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हम डाइटिशियन के पास चले जाएँ तो हो सकता है उससे कम हो जाएगा, या फिजिकल एक्टिविटी से भी कम, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये सोच पाते होंगे कि हम सर्जरी की तरफ जाएँ, क्योंकि खुद थोड़ा सा डरावना सा रहता है। तो मतलब कैसे हम ये सोचें कि हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए और कितना बेहतर हमारा जीवन हो सकता है?
0: सर्जरी कराने से चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी और मैंने वो जो गाइडलाइन आपको बताया कि अगर आपकी BMI 40 के अप्रॉक्स जा रही है, 40 एवब जा रही है और आपके वजन 110 केजी से एवब जा रहे, इवन आज के डेट में 95 केजी वाले भी कहते हैं कि मेरी सर्जरी कर दो, बट अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको डर लग रहा है और आपकी वजन 110 केजी से एवब है तो आपको सर्जरी के लिए सोचना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, करानी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए आपको थोड़ी बेनिफिट मिल सकती है, बट सर्जरी से आपको 80% 90% बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: सर, रिस्क कितनी रहती है, ईमानदारी से बताइएगा।
0: किसी भी सर्जरी में, मैं जिस भी सर्जरी की यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे को उदयपुर आए हुए आज 3-4 महीने हो गए, और रिस्क की बात करूँ तो मतलब सर्जरी में कोई रिस्क नहीं होता है, बिल्कुल, आप मतलब लगाइए कि किसी भी तरह की सर्जरी कराइए, आप अगले 7-8 घंटे में घूम फिर सकते हैं।

0: फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, घर जा सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच सर, इतनी पॉजिटिविटी हम सभी तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरव आनंद, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आप भी संबंधित विषय पर हमसे सवाल कर सकते हैं, 9462697568 नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लगातार हमारे श्रोताओं के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन अब सर वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का है।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
0: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
1: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
2: सो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी और आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरव आनंद, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आप भी हमसे सवाल लगातार कर रहे हैं। आज के हमारे नंबर्स हैं 9462697568। सर, इसी दौरान एक सवाल हम तक पहुंचा है, जो कि श्रोता हैं दिलीप आहूजा, जो कि सभी जानकारियों को पसंद कर रहे हैं, आपका थैंक्स कह रहे हैं, और साथ ही उनका सवाल है कि इस

0: गर्मी के मौसम में पानी कम पीने से क्या बाथरूम लाल हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। ये आपसे संबंधित सवाल है।
1: हाँ, बट ये तो डॉक्टर से संबंधित सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मौसम में आपको प्यास लगने की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको लगे, हर घंटे आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। बॉडी की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में।
0: जी सर, हम बैरियोट्रिक सर्जरी की बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा एक सवाल हम तक पहुँचा है, जो कि लिखते हैं कि बैरियोट्रिक सर्जरी के बाद वज़न बढ़ता है, क्या ये संभव है, और सामान्य तौर पर इसका खर्चा कितना होता है, क्योंकि ये एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है उनका कहना है, और अपने फ़ायदे तो बता दिए, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी बताइए। ये हमारे जो श्रोता हैं वो है राजकुमार माथुर उदयपुर से ही।
1: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैरियाट्रिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी केवल और केवल प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा की जाती है। बैरियाट्रिक सर्जरी इट्स अ लाइफ क्वालिटी मॉडिफिकेशन सर्जरी। अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, आपके शरीर के जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन, स्लीप एपनिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जल्द से जल्द रिकवर होती है। मोटापे की सर्जरी कराने के बाद आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होता है और आपको शुगर की दवाइयों से छुटकारा मिलता है। मोटापे की सर्जरी कराने से आपके बीपी जल्द से जल्द कम होते हैं, आपके घुटनों की जो दर्द है वो जल्द से जल्द कम होती है। जहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि दोबारा मोटापा हो सकता है, देखिए ये चीज़ें जो हैं 10% पेशेंट्स में देखा जाता है, और उनकी सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को किस सर्जरी की ज़रूरत थी और आपने उनकी क्या सर्जरी की। अगर पेशेंट्स को जिस टाइप के बैरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है और आपने उनको दिया और उनको आपने सारी सलाह बताई कि आपने ऐसे ऐसे आगे लाइफ में प्रोसेस करना है, तो उनके शरीर का मोटापा नहीं बढ़ता है।
0: ओके, मतलब बाद में भी हमें संयमित जीवन तो जीना है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब सर्जरी करवा ली तो हम बिल्कुल फ्री हैं, जैसे कि सॉन्ग में बताया है कि खा ले पी ले और मस्त रहे, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए।
1: डिसिप्लिन लाइफ में हर जगह जरूरी है, डिसिप्लिन के बिना जिंदगी अधूरा है।
0: बिल्कुल, तो एक कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी अलग है और बैरियाट्रिक सर्जरी अलग है। एक और सवाल हम तक पहुँचता है, दीपक गर्ग हैं, जो कि पूछना चाह रहे हैं कि इस सर्जरी के बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है क्या?
1: न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक्चुअली नहीं होती है। अगर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो वो हम बाहर से पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जनरली क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट्स की मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं, जिसमें पेशेंट्स के बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। बॉडी में जो आप डाइट ले रहे हैं उस डाइट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। पहले जो डाइट आपके बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होके आपको फुल्ली वेट देता था, वो डाइट जो है अब 10-20% एब्जॉर्ब होगा और आपके मोटापे को कंट्रोल करके रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होंगे। आप मोटापा की सर्जरी कराने के बाद हेल्दी फील करेंगे।
0: सर, कमल सुहाल का जो हमारे श्रोता हैं, वो उनका एक और सवाल है। उनका लिखना है कि मेरा हर साल वज़न जो है वो गिरता जा रहा है। हम अल्कोहल नहीं लेते हैं, हम पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि वज़न घटने का जो है वो कारण क्या हो सकता है।
1: देखिए, अगर वज़न घट रहा है तो फिर तो आपको किसी डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। आज जब वज़न घटने की बात हुई तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपका 6 महीने में 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो वज़न कम हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि बॉडी में मतलब कोई कैंसर्स की बीमारी तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। वेट लॉस होना, भूख कम लगना, ये सब कैंसर्स की बीमारी के पहचान हो सकते हैं। आज के डेट में रोबोटिक सर्जरी से कैंसर्स के हर इलाज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से संभव है। आज पेट का कोई भी कैंसर है, आप हमारे पास आइए और उसके कैंसर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी का उपयोग कीजिए, आपको टोटल क्योर मिलेगा।
0: सर, आपने आपके पास आने की ही बात कही, तो आप कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिसके लिए हम आप तक आ सकते हैं, आप और उदयपुर में कब कब आप अवेलेबल होते हैं?
1: नहीं, मैं उदयपुर में टोटल 7 दिन अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे से कॉन्टैक्ट करने में। और जहाँ तक बात है तो कॉमन सर्जरी से शुरू करते हैं
0: जी।
1: आप हमारे पास गॉल स्टोन डिजीज के लिए आ सकते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की हर्निया की सर्जरी के लिए आ सकते हैं। अगर आपके पेट में कोई इंटेस्टाइनल रुकावट हो, आप उसके लिए आ सकते हैं। अगर आपको रिफ्लक्स डिजीज है या आपकी गले में जो इसोफेगस होता है उसके अंदर कोई रुकावट है, या फिर आपकी मोटापा बढ़ रही है।

0: बेडियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, हिमरॉइड्स, पाइलोनाइडल साइनस है, आप उनके लिए हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन की शिकायत है, आप उसके लिए हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए भी हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई स्वेलिंग हो रही है, तो आप उसके लिए भी हमारे पास आ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि सर्जरी ही इसका इलाज है, आपको उसके लिए आगे आके सर्जरी करानी चाहिए।
1: सर, एक हमारे श्रोता हैं उदयलाल टेलर, जो कि आपको नमस्कार कर रहे हैं, और उनका सवाल है कि वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से उनका वज़न जो है फिक्स है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है। तो उनका ये सवाल है कि क्या सर्जरी से वज़न भी बढ़ाया जा सकता है?
0: नहीं, अगर आपका वज़न अच्छा है तो आपको बहुत बधाई, आप इसको मेंटेन करके रखिए, वज़न बढ़ाना गलत चीज़ है।
1: सर, एक श्रोता हमारे हैं अमृत सेन, जो कि जिनकी जिज्ञासा है कि हर्निया के ऑपरेशन के बाद में जो जाली लगते हैं वह क्यों लगाई जाती है, इसकी जानकारी वो चाहते हैं आपसे।
0: हर्निया के ऑपरेशंस में जाली, हम पहले ही बताए थे कि हर्निया तभी होता है जब हमारे बॉडी में जो वॉल्स बने हुए हैं, जिनको एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, इनके अंदर डिफेक्ट आ जाती है, इनकी स्पेस बढ़ जाती है। तो जब हम उस स्पेस को कम करते हैं तो उसको रीइंफोर्स, मजबूती देने के लिए हम पीछे से जाली लगाते हैं। जाली लगाने से हर्निया की जो वॉल्स है उनके अंदर मजबूती आती है, दोबारा वहाँ पर हर्निया होने के चांस नेग्लिजेबल होते हैं, नाक के बराबर होते हैं। तो एवरी हर्निया सर्जरी नीड्स जाली, मेस, विदाउट मेस नो हर्निया सर्जरी इज कम्प्लीट।
1: ओके सर, आपने बीच में कैंसर का जिक्र किया था, तो कौन कौन से कैंसर हैं जिसके लिए ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूरबीन वाली जो सर्जरी है वो करवाई जा सकती है, या फिर रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाएं हम, तो कौन कौन से कैंसर्स का इलाज हो सकता है?
0: अगर मैं कहूँ तो आज के डेट में रोबोटिक सर्जरी से आप थायराइड के भी कैंसर, ब्रेस्ट के भी कैंसर, लंग्स के कैंसर, यूरिन के, यूरोलॉजिकल कैंसर, सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, इन सभी सर्जरी को रोबोट से आप कर सकते हैं।
1: सर, एक बात यहाँ पर आती है, हमने इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए और हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, पहले जहाँ ओपन सर्जरी होती थी, तो जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इतनी सफल है, सब कुछ सही है, तो हम क्यों जाएं रोबोटिक सर्जरी की तरफ? क्योंकि एज अ आम जन उसमें मतलब खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो हमें क्यों जाना चाहिए उस तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: रोबोटिक सर्जरी आज के डेट में हाईली एडवांस सर्जरी है। जब बात होती है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से चीज़ें हो सकती है, तो हम रोबोटिक सर्जरी की तरफ क्यों जाएं? दुनिया विकसित हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में लोग कार चलाते थे, उन कार में एयरबैग्स नहीं आते थे, फिर भी लोग उस कार को चलाते थे, उनकी सारी ज़रूरतें उस कार से पूरी होती है। आज के डेट में एयरबैग्स आ गए कार में, लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एयरबैग वाली कार चाहिए। आपको एयरबैग की कार क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ सेफ्टी। आपको लाइफ में सेफ्टी चाहिए कि मैं पहले भी ड्राइव कर रहा था, अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ, बट एयरबैग्स रहेंगे तो वो मुझे सेफ करेंगे। माइंड में एक परसेप्शन है कि माई कार हैज़ एयरबैग्स। तो उसी तरह रोबोटिक सर्जरी है, पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही थी, आज भी हो रही है, बट रोबोटिक सर्जरी इज अ प्रिसाइज सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में आपको कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, आप जल्द से जल्द घर जा सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी दुनिया का सबसे एडवांस सर्जिकल तरीका आज के डेट में है।
1: सर, आपने अभी कुछ देर पहले एक आर्ट फॉर्म की बात की थी, तो थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से आप इसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं से साझा करें प्लीज़।
0: देखिए, किसी भी सर्जरी का जो हार्ट होता है वो सर्जन होता है। एक सर्जन के बिना कोई सर्जरी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो रोबोट हमारे पास अवेलेबल है, बट रोबोट्स किसी भी इथिकल डिसीजंस को नहीं ले सकता। रोबोट कभी पेशेंट्स के इमोशंस को नहीं समझ सकता। अगर सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको रोबोट मैनेज नहीं कर सकता। रोबोट खुद से कोई जजमेंट नहीं ले सकता। रोबोट एक हाईली एडवांस्ड टूल है जो कि सर्जन्स के द्वारा ही संचालित होता है। पूरा का पूरा कमांड सर्जन्स के हाथ में होता है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन्स हर चीज़ कंट्रोल करता है, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आप कैमरा इधर दिखाओ, आप कैमरा सीधा दिखाओ। रोबोटिक सर्जरी में कैमरा, सूचरिंग, निडल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ सर्जन। तो रोबोटिक सर्जरी एक सर्जन के द्वारा संचालित, पूरी तरीके से सर्जन के द्वारा संचालित सर्जरी है।
1: सर, तो मतलब उसमें आपको हेल्प मिलती है, मतलब आपको जैसे

0: जो है फोर हैंड एक तरह से मिल जाते हैं या फिर आपको 3D विजन दिख रहा है, तो एज अ डॉक्टर आपके लिए ये बेनिफिशियल है, बट एज अ पेशेंट मेरे लिए क्या बेनिफिशियल?
1: अगर आप पहले ओपन सर्जरी कराते थे, आप हॉस्पिटल में 10 दिन तक रहते थे, आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के डेट में कराते हैं, आप हॉस्पिटल में मिनिमम 3 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, बट आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, आप सुबह रोबोटिक सर्जरी कराते हैं, आप शाम को घर जा सकते हैं, अगले दिन आप काम पे वापस जा सकते हैं। अगर आपने छुट्टियां जो है पहले जो 5 दिन की लेते थे, आज के डेट में रोबोटिक सर्जरी से आप उस छुट्टी को 1 दिन में ले रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे देखिए कि देश को कितना बड़ा मनी सेविंग होगा जब लोग तुरंत सर्जरी करा के काम पे वापस लौट जाएंगे।
0: ओके
1: सो और जैसे जैसे रोबोट्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, रोबोट्स की सर्जरी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी, ऑब्वियसली रोबोटिक सर्जरी के भी रेट कम हो जाएंगे। आज के डेट में ये एडवांस सर्जरी, पहले के ज़माने में आप देखो ना, हर चीज़ जो कम होती है उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो चीज़ें मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल होने लगती हैं उसके रेट्स कम हो जाते हैं, तो आने वाले टाइम में रोबोटिक सर्जरी की भी रेट्स कम हो जाएंगे। आज की भी डेट में रोबोटिक सर्जरी अफोर्डेबल है। अगर आप बेटर सर्जरी चाहते हैं, लाइफ में सर्जरी एक बार होती है, आपको रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए।
0: मतलब हम ऊपरी तौर पर देखें तो हमें कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत मतलब महंगाई वाला सौदा नहीं है एक तरह से।
1: बिल्कुल नहीं है।
0: जी सर, एक श्रोता है हमारे, अनीता जी नाम है उनका, जो कि आपको गुड मॉर्निंग बोलते हुए कह रही हैं कि 8-9 साल पहले उन्हें पेट में दर्द हुआ, सोनोग्राफी करवाई थी तो बाथरूम और इसकी नली के अंदर पत्थरी बताई डॉक्टर्स ने, उन्होंने दवाई ली उसके बाद दर्द नहीं हुआ, तो क्या उन्हें ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, वो इसकी जानकारी चाहती हैं।
1: एक्चुअली राजस्थान के एरिया में क्या है कि थोड़ा पानी जो है डिफरेंट किस्म का है, तो लोगों के अंदर रीनल स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी इधर ज़्यादा है। कई रीनल स्टोन्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट 30% रीनल स्टोन्स वो पानी पीने से और दवाइयाँ लेने से निकल जाते हैं, बट होने के चांसेस दोबारा बहुत ज़्यादा है।
0: अच्छा, फिर भी चांसेस हैं। ओके
1: yeah.
0: तो हमारे श्रोताओं से हम कहेंगे कि कुल 10 मिनट और हम इस प्रोग्राम में आप सभी के साथ बने हुए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरव आनंद, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत सारे विषयों पर हम बात कर चुके हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 9462697568 नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: बिल्कुल, तो जीवन में कुछ भी नया होता है तो आपके लिए अच्छा ही होता है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो रोबोटिक सर्जरी एक अच्छा सेफ ऑप्शन है और उदयपुर शहर में डॉक्टर सौरव आनंद जो हैं वो इसके लिए उपलब्ध हैं। सर, अब हमारे प्रोग्राम में कुछ वक्त और है, इससे बीच में हमारे पास एक सवाल आया है। सुभाष सिंह हैं श्रोता, जो कि लिखते हैं कि उनकी उम्र 50 साल है और लंबाई उनकी 5 फीट और 3 इंच है, वज़न उनका 75 किलो है, पेट पर बहुत सारी चर्बी है, तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो सर्जरी करवा सकते हैं।
1: नहीं, उनको अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, हाइट भी अच्छी है, वेट भी ठीक है, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है।
0: ओके, मतलब अभी वो किसी और ऑप्शन से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। जी सर, एक और श्रोता है जिनका नाम है कृष्णा कुमावत, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते करते हुए कि वो 43 साल के हैं। मेरे लेटरिंग करते समय कुछ हिस्सा बाहर आता है जिसे अंदर पुश करना पड़ता है, रोज़ अगर ये सर्जरी मतलब रोज़ ऐसा होता है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये सर्जरी करवाती हूँ तो क्या खर्च होता है, कॉस्ट पूछना चाहते हैं।
1: देखिए, एवरी सर्जरी इज़ अफोर्डेबल नाउ, आप कोई भी सर्जरी महंगी नहीं है, आपको है कि सेफर सर्जरी करानी चाहिए, बेटर रिकवरी लेनी चाहिए जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। तो मैं बेटर सर्जरी, सेफर सर्जरी, बेटर रिकवरी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको आके सर्जरी करानी चाहिए और आपको सर्जरी की बिल्कुल ही ज़रूरत है।
0: सर, तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जिन सभी के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। एज अ डॉक्टर, आप इन सभी टॉपिक्स में से कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए आप सजेस्ट करेंगे कि आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को छोड़कर रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? मतलब सभी तरह, जैसे हम अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं या हम हर्निया की बात कर रहे हैं, सभी के लिए हमें लैप्रोस्कोपिक को छोड़कर रोबोटिक की तरफ जाना चाहिए या फिर कुछ सीवियर हो या तभी उस तरफ जाएं?
1: नहीं, सारी की सारी सर्जरी जो आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के तरफ करा रहे थे, उन सभी सर्जरी को आपको रोबोटिक सर्जरी से करानी चाहिए। रोबोटिक सर्जरी आपको बेटर सर्जरी देता है। रोबोटिक सर्जरी की जो विज़न है, जो प्रिसीजन है, जो मैग्निफिकेशंस हैं, वो आपको सर्जरी की बेहतरीन आयाम पे ले जाती है। तो किसी भी प्रकार की सर्जरी हो तो आज के डेट में आपकी पहली सोच रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए।
0: जी सर, अगर एज अ पेशेंट या आम जन के नज़रिए से मैं सोचूं तो मैं केवल रोबोटिक सर्जरी की तरफ इसलिए नहीं जाऊंगी, एक तो कॉस्ट कारण हो सकता है और एक थोड़ा सा ये डर कि भाई मतलब डॉक्टर बिल्कुल रूबरू हमारे साथ उस समय नहीं होंगे, तो आप कैसे आश्वस्त कर सकेंगे आमजन को?
1: नहीं, रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर्स बिल्कुल पेशेंट्स के बगल में होता है। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं कि डॉक्टर कहीं ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर बैठा होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो और रोबोटिक सर्जरी अफोर्डेबल सर्जरी है। आप समझो कि आप दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम जो कि करोड़ों रुपए की

0: है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास एक रोबोट की कॉस्ट होती है. तो अगर आप इतने महंगे इक्विपमेंट से अपने बॉडी पे सर्जरी करा रहे हो और सर्जरी लाइफ में एक बार होती है, तो आपको बिल्कुल रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए. रोबोटिक सर्जरी रियली अफोर्डेबल है और रोबोटिक सर्जरी रियली सेफ सर्जरी है. रोबोटिक सर्जरी में आप सर्जरी कराओ और सर्जरी के 6 घंटे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ महसूस करोगे.
1: तो सर, जब ये जो सर्जरी होती है, ये वाली सर्जरी होती है, तब आप सब कुछ मतलब सामने स्क्रीन पर देख पाते हैं और सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं रोबोटिक सर्जरी से एक तरह से?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, हम अंदर की सर्जरी को देख सकते हैं. रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांसमेंट नहीं है. रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी का एडवांसमेंट है. ओपन सर्जरी में क्या था कि हम पेशेंट्स को एक बड़ा चीरा देते थे और पेशेंट्स के पेट को या जिस भी ऑर्गन की सर्जरी करनी है उसके अंदर जाते थे और सर्जरी करते थे. रोबोटिक सर्जरी क्या है कि आज के डेट में आपको पेशेंट्स की पेट खोलने की जरूरत नहीं है. आप पेशेंट्स के पेट में बैठ के सर्जरी कर रहे हो, ऐसा फील होता है. तो आप समझो कि अगर एक डॉक्टर इतनी प्रिसाइजली इतनी स्किलफुल सर्जरी कर रहा है तो आपको एज ए पेशेंट उसका कितना बेटर रिजल्ट मिलेगा.
1: जी सर, तो आप मतलब किसी क्षेत्र में अगर आप स्पेशल किसी क्षेत्र के डॉक्टर हैं तो आपको फिर वो रोबोटिक सर्जरी के लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी जो अब तक आप कर रहे हैं. तो आप एज अ डॉक्टर उसमें कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना आपको बेनिफिट लगता है एज अ डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी का?
0: रोबोटिक सर्जरी बहुत ही बेनिफिशियल सर्जरी है. सर्जन्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि हम पेशेंट्स को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं. और पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गॉल ब्लाडर, अपेंडिक्स, हर्निया, अगर किसी भी तरह के हाइटस हर्निया और किसी भी तरह की बैरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको रोबोटिक सर्जरी सोचनी चाहिए और आपको GBH हॉस्पिटल में आके डॉक्टर सौरभ आनंद से मिलना चाहिए.
1: जी सर, इसी बीच एक सवाल हम तक पहुंचा है, वो है चेतन दीक्षित जो कि लैप्रोस्कोपिक और इंडोस्कोपी में डिफरेंस जानना चाहते हैं.
0: नहीं, लैप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी बोथ आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है.
1: अच्छा, सेम ही है. ओके सर, तो अब हमारे प्रोग्राम में हमने बहुत सारे विषयों की जानकारी आपसे प्राप्त की और सबसे बड़ी बात है कि आपसे हर सवाल का जो जवाब है उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई हैं. हम सर्जरी से अब डर नहीं रहे, हम उसे एक आर्ट फॉर्म मान रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिविटी हम तक पहुंची है. सर, अब समअप करने का वक्त है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं?
0: नहीं, सबसे पहले तो हम अपने सारे श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बेहतरीन समय निकाल के हमारा सारी भावनाओं को समझा. मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड. मॉडर्न सर्जरी जो है वो सर्वाइवल के बारे में नहीं है. मॉडर्न सर्जरी जो है वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग बेटर के लिए है. तो आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में बिल्कुल सोचें और जो चीज़ दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, वो सर्जरी से क्योर हो सकती है. तो मेडिसिन इज़ नॉट इनफ, आपको सर्जरी के बारे में और रोबोटिक सर्जरी के बारे में बिल्कुल पहली सोच रखनी चाहिए.
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. वाकई में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ चिकित्सा क्षेत्र और भी उन्नत होगा जिससे मरीजों को बेहतर और तेज उपचार मिल सकेगा, यही उम्मीद हम करते हैं. और ऐसी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आज हमें आपसे आई है और हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़ सकते हैं. अब अगर कहीं भी जिक्र चला हमारे घरों में किसी तरह की भी सर्जरी का, तो हम सोच सकते हैं कि हमें आपके पास आना है. थैंक यू सो मच सर, इतनी मुस्तैदी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए. थैंक्स अ लॉट.
0: थैंक यू.
2: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
3: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000.
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000.
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल भेड़वास उदयपुर.

तो श्रोताओं, ये था प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे रोबोटिक और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरव आनंद। इस गीत के उस पार आप सुनेंगे हिट परेड प्रोग्राम।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: लिसनर्स चॉइस, अब ये प्रोग्राम सुनिए हर शुक्रवार को सुबह ठीक 11 बजे। इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और

0: बता सकते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है, तो शुक्रवार की सुबह ठीक 11 बजे सुनिए प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर।
1: तो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी और आज सुबह 11 बजे आप सभी के लिए होने वाला है लिस्नर्स चॉइस प्रोग्राम, जिसके लिए आप सभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 10:45 से 11 बजे तक। नंबर आपने सुन ही लिया 9462697568। समय सीमा का ध्यान रखिएगा उदयपुर, 10:45 से 11 बजे तक जो आपके व्हाट्सएप आएंगे उनके ही नाम हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और जितनी भी फरमाइशें उस एक घंटे के दौरान पूरी हो सकेगी हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अब वक्त हो चुका है हिट परेड का।

हिट परेड प्रोग्राम में ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम था खुद कर्ज। अगला गीत जिसमें मोहम्मद अजीज का साथ दे रही हैं सलमा आगा। फिल्म का नाम है पति पत्नी और तवायफ। दोस्तों आपको बता दें कि सुबह के 10:45 होने को है, अब से लेकर 11 बजे तक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी फरमाइश के गीत 9462697568 नंबर पर। प्रोग्राम होगा लिसनर्स चॉइस।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

प्रोग्राम हिट परेड आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेडियो लेक सिटी से। ये अगला गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में, फिल्म का नाम है मृत्युदाता।

लिसनर्स चॉइस। अब ये प्रोग्राम सुनिए हर शुक्रवार को सुबह ठीक 11 बजे। इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है। तो शुक्रवार की सुबह ठीक 11 बजे सुनिए प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सुजय है 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी उदयपुर। शुक्रवार का दिन है और हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11:10 हो चुके हैं। जी हाँ, और आपके बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी है और आप सभी से गुजारिश है कि अब कोई भी फरमाइश, कोई भी व्हाट्सएप संदेश आप हमें ना करें, क्योंकि जो संदेश हमें 11 बजे तक मिले हैं हम उन्हें ही इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिन श्रोताओं की फरमाइश को पूरा कर रहे हैं, वो श्रोता सुनना चाहते हैं धर्म कर्म फिल्म का गीत। ये श्रोता हैं ब्रजमोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, श्रीजी विहार, खेड़ा सर्कल, सेक्टर 14, उदयपुर के श्रोता हैं। तो आइए, लिसनर्स चॉइस का ये सबसे पहला गीत आप सभी के लिए।

खूबसूरत सा संदेश देता है गीत धर्म करम फिल्म से आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ हम कुछ नाम और शामिल कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है चेतक सर्कल से मुकेश जिंगर और रेणु जिंगर का, साथ ही प्रेमपुरी गोस्वामी का सहेलियों की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के हमारे श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप जो हम तक पहुँचा है वो गाँव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से है। सतवीर सिंह बिजाड़निया, देवेंद्र सिंह बिजाड़निया, राजपाल जी, अभिषेक जी, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजाड़निया का संदेश आया है और इसी के साथ अगला संदेश हम तक खमा घणी के साथ पहुंचा है तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल से, गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भव्यराज सिंह सारंग देवोत, भुरकिया खुद बोहेड़ा से भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, बोहेड़ा चौहानों की हवेली, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर के श्रोता हैं, मनोज बागड़ी एडवोकेट, महेश बागड़ी आदर्श नगर पहाड़ा से, विकास सिंह जयपुर से और साथ ही कुशाल बागड़ी मन बागड़ी सेक्टर नंबर 14 से हैं, ललित सिंह चौहान काकरवा से हैं और हेमेंद्र चौधरी ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयर के श्रोता हैं, उमेश दाहिमा हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलाल वाटी के श्रोता हैं, इंदर सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से हैं और दीपेश चौहान हाथीपुल के श्रोता हैं। इसी के साथ हम तक और व्हाट्सएप पहुंचा है वो है ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयर के श्रोता हैं, हेमेंद्र चौधरी ललित सिंह चौहान काकरवा मन बागड़ी से सेक्टर नंबर 14 से, उमेश दाहिमा हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलालवाटी, नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है मुकेश जी चौहान का, बजरंगी भाई देवारी से, लाला भाई निमावत प्रतापनगर से, गोपाल भाई निमावत सुखेर से, राजू भाई खींची माधुरी अंजी निमावत देवारी से हैं, तनिष्क चौहान सूरजपुर कालिका माता चौक से उदयपुर से और इन्होंने भी मैसेज किया। अगला मैसेज हमें पहुंचा है नमस्कार के साथ गांव जाखोद राजस्थान से, शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक का। अगला व्हाट्सएप पहुंचता है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मरुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से के श्रोता हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मरु से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का धन्यवाद के साथ। अगला व्हाट्सएप आता है सालर पहलगाम से कश्मीर से परजादा मिराज मिराजुद्दीन, नमाज मिराजुद्दीन, कैसरुद्दीन और ये हमें व्हाट्सएप करते हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है बस्ती राम की बाड़ी उदयपुर से सिराज हुसैन और ताहिर अली, शिरीन जैनब और तस्नीम का और सभी मोतीवाला फैमिली, बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगली फरमाइश हम जिन श्रोता की पूरी कर रहे हैं वो हमारे श्रोता हैं अशोक जी हैं प्रताप नगर उदयपुर से।

0: हम तक पहुँचे हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और इसी के साथ व्हाट्सएप आया है नमस्कार के साथ धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बीबी आलिया आयान बाबू का शुक्रिया के साथ। आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में व्हाट्सएप आपने किया। इसी के साथ अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है नमस्कार के साथ कभी रेडियो श्रोता संघ डाडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया का, साथ ही राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर भी उनके साथ हैं। चलिए अब वक्त है अगली फरमाइश को पूरा करने का, और अगली फरमाइश जिन श्रोताओं ने भेजी है वो हमारे श्रोता हैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी नाहर सिंह वारी, भावना रावत नितिन रावत, आयुर्वेद चौराहे से अशोक चौहान मंजू चौहान उषा चौहान, बापू बाजार से मीना वारी साक्षी वारी दीपक रावत किरण रावत, भोपालवाड़ी से दिलीप भाई सत्तू भाई रवि भाई मामा वाले, और नेक्स्ट जो व्हाट्सएप आया है वो है हरीश रावत और मीना रावत, और वो इस गर्मी के मौसम में सुनना चाहते हैं ये गीत।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी से,
0: फिल्म का नाम पति पत्नी और वो।

मस्ती भरा गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ कुछ श्रोताओं के और नाम हम शामिल कर लें तो ये नाम हम तक पहुंचे हैं। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन येले, नीलेश येले का, बुद्ध विहार बाबली से मंगेश पानबुड़े, भानुदास पानबुड़े और टेकड़ेवाड़ी नागपुर से सुशील येले और मनीषा येले का धन्यवाद के साथ आपका भी शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, रितु सिंह, कृष्ण सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह के साथ हैं। और अगला व्हाट्सएप आता है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरी हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। ये व्हाट्सएप पहुंचा है गांव नथाना से पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का, ये हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला व्हाट्सएप जो हम तक पहुँचा है वो है गोवर्धन विलास कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव रिधान खुराना का। चलिए और व्हाट्सएप हम तक पहुंच चुका है जो कि

सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी का हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है। और अब वक्त है अगली फरमाइश को पूरा करने का। तो ये फरमाइश हम तक पहुंची है हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर के श्रोता है सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, कार्तिक यादव, नमिता शानू और संजू यादव का। और ये सुनना चाहते हैं कूली नंबर 1 फिल्म का ये गीत।

चलिए जी, गर्मी से तो सभी परेशान हैं। फिलहाल इस गीत के साथ ही हम कुछ और व्हाट्सएप हम शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है, ये नाम है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से, माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा का। ये व्हाट्सएप आया है हम तक ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, राजेंद्र प्रहलाद वर्मा और सूरज और कुशल वर्मा का। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है भरत रेगर, डिंपल रेगर, प्रिंस गोकू और रेगर कॉलोनी के श्रोता हैं, गुलाब रेगर, शांति रेगर, रेगर कॉलोनी से ही हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है राहुल शर्मा, योगेश शर्मा, योगी शर्मा, विक्रम शर्मा का, लक्ष्मी मार्ग अमल का काटा से। ये व्हाट्सएप आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का हम तक पहुंचता है। अगला व्हाट्सएप आया है वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार अगर आपका नाम शामिल हो जाए तो प्लीज़ फिर से आप व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि हम भी फ्लुएंट बोलते समय वो शामिल कर लेते हैं, बल्कि नाम सिर्फ एक ही बार शामिल होना चाहिए। तो अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। ये व्हाट्सएप आया

बिल्कुल, आप भी हमारे दिल के पास हैं उदयपुर, बेगाने ज़रूर हैं लेकिन हमेशा अपने से लगते हैं, और आपका अपनापन इन व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचता है। चलिए, अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है वो है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और दिशानी और निमित्त आहूजा, ये हमारे श्रोता हैं। नेक्स्ट व्हाट्सएप जो हम तक पहुँचा है, आप सभी श्रोताओं से कहेंगे कि लगातार आपके व्हाट्सएप पहुँच रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी आप व्हाट्सएप ना करें क्योंकि 11 बजे के बाद के व्हाट्सएप हम शामिल नहीं करने वाले हैं। ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, इन्होंने यही मैसेज दोबारा किया है। चलिए, नेक्स्ट मैसेज जो हम तक पहुँचा है वो है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान का, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के श्रोता हैं। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है पटेल नगर मालोट से, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया,

गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजोरिया और गुड्डू का। व्हाट्सएप पहुंचता है अगला वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। इसके बाद का व्हाट्सएप आया है हम तक तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवेश, पूरा खत्री परिवार, कालदावास सांची ग्रुप से हैं ये। और ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का। नमस्कार के साथ ही व्हाट्सएप करते हैं। ये व्हाट्सएप हम तक आया है मारहरा दरवाज़ा एंटा से नबी हसन अब्बासी का, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हरन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी सिकंदराव राव से और मुबीन अब्बासी। तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप पहुंचता है ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति शिवांश का। अगला व्हाट्सएप आया है हम तक कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। तो चलिए अब पूरी करते हैं अगली फरमाइश और ये है बिन फेरे हम तेरे फिल्म से। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के श्रोता।

चलिए, तो फरमाइशें बहुत हैं और नाम भी बहुत हैं, तो इसी गीत के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, ये लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। इसी के साथ हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर, अक्षिता माथुर, आलिंद माथुर बोरा गणेश जी के श्रोता हैं और इन्हें कार्यक्रम पसंद आता है, साथ ही वो हेलो डॉक्टर प्रोग्राम को भी पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है आदरणीय मेज़बान जी, नमस्कार करते हुए वो लिख रहे हैं, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, निवान शर्मा का। ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिय कुमावत, रजत कुमावत का। अगला व्हाट्सएप आता है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव का। ये व्हाट्सएप आता है नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई, सैफन भाई का। और रामपुरा से नारायण सेन जी हैं, वो भी हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं, शुक्रिया के साथ हमें व्हाट्सएप करते हैं। ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है गांव फरासी, ज़िला हिसार से राम कुमार ढूंढी,

प्रमोद कुमार ढूंढी, पुष्पेंद्र कुमार ढूंढी का। इसका अगला व्हाट्सएप जो हम तक पहुंचा है, बहुत सारे व्हाट्सएप कर डाले हैं उदयपुर। चलिए नेक्स्ट जो व्हाट्सएप पहुंचा है वो है धर्मचंद्र, रेखा, घनश्याम, ज्योति, निमिषा, योगेश जी, आकाश, शिवानी, वैशाली, सौरभ और समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजनगर, राजसमंद के श्रोता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए नेक्स्ट फरमाइश पूरी करने का वक्त है, तो नेक्स्ट गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना।

हीरा पन्ना फिल्म के इस गीत को पसंद किया है हफीजा मिठाई, निशा फकरू, यूनुस असगर, सकीना ओटावा, जाकिया गिरिया, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर की हमारे श्रोता हैं।

चलिए अगला फरमाइशी गीत बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस गीत के साथ कुछ नाम और शामिल कर लेते हैं। ये नाम आए हैं बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू नागर, मोहित नारंग और तानिया नारंग का। अगला व्हाट्सएप जो हम तक पहुंचा है वो है गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी और पुष्पेंद्र कुमार डूंडी का। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है रामपुरा से शुभा रानी वैष्णव का। और इसका अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत का। और अब हम जिन श्रोता की फरमाइश पूरी करने वाले हैं वो सुनना चाहते हैं संजोग फिल्म का गीत। ये फरमाइश करने वाले श्रोता हैं दिलीप पाहुजा, अशोक एन लोहार जी, बापू बाजार 190 से थैंक्स के साथ।

चलिए तो ये जनाब तो सैर करके आ गए। फिलहाल हम सैर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की, जिस पर बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। तो ये नेक्स्ट मैसेज हम तक पहुंचा है भरत जायसवाल सोनी गरासिया गांव मंडावा डूंगरपुर राजस्थान के श्रोता हैं। इसका अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है नीरज ध्रुवेश प्रेम शंकर दिवांश खरौल कलानी फतेहपुर उदयपुर के श्रोता हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट फरमाइश हम पूरी करने वाले हैं वो हमारे श्रोता हैं श्रीनाथ मार्ग खिरातीवाड़ा से सत्यनारायण कुरिल, पुष्पलता कुरिल, मिताली मिनाली और रोहन कुरिल की, जो कि हॉट एंड शॉर्ट दीपक मेहता के साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो ये गीत आप सभी के लिए फ्रॉम

और आप संग संग चल रहे हैं 101.9 FM रेडियो लेक सिटी की, जिस पर आपके बहुत सारे मैसेज हैं उदयपुर। तो चलिए अगला नाम हम शामिल कर रहे हैं, रोशन लाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललित सालवी, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम सालवी, सचिन, विवान, शहत्विक, पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा कॉलेज उदयपुर के श्रोता हैं जिन्हें प्रोग्राम पसंद आता है। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से खतूरिया कशिश हसीजा, दीपक हसीजा और मीर हसीजा क्यू, शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतूरिया, काम्या खतूरिया, विकास भानु खतूरिया, हिताक्ष खतूरिया, जय सालवी, संतोष खतूरिया, यज्ञ सालवी, ढूंढ तलाई दूध तलाई उदयपुर के श्रोता हैं। चलिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका सेक्टर से और शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का हम तक व्हाट्सएप पहुँच

बच्चा है। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है, ये श्रोता है ग्राम पजूनिया जिला जालोर उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया का। उदयपुर, हमें बहुत बुरा लगता है जब आप हमें व्हाट्सएप भी करते हैं लेकिन हम आपके नाम शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि 11 बजे के बाद भी आपके व्हाट्सएप लगातार हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमक रहे हैं और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हम आपके नाम ना लें। तो आप सभी से गुजारिश है कि समय सीमा का ध्यान रखें। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत वर्मा, सोनम वर्मा। 11 बजे तक के नाम भी हम ले पाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे नाम आ चुके हैं। चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन से DS जस्सल का व्हाट्सएप आया, सतवीर जस्सल, सुरेंद्र कुमार जस्सल, एकम सिंह जस्सल, सुषमा और उनके सभी साथी, बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। और शायद आपको ये लगता होगा कि आपका नाम शामिल नहीं होगा तो इसीलिए आपने यही मैसेज 3 बार कर डाला है। तो आप तसल्ली रखें, अगर 11 बजे तक आपने व्हाट्सएप किया है तो नाम हम ज़रूर शामिल करेंगे। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है वो खमाघणी के साथ तुलसीराम जी चौहान सूरजपोल के श्रोता हैं। आई थिंक इनका व्हाट्सएप हम शामिल कर चुके हैं, फिर भी चलिए नाम हम ले लेते हैं। गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भविराज सिंह सारंग देवोत, भुरकिया खुद बोहेड़ा, भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, बोहेड़ा चौहानों की हवेली, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर के श्रोता, मनोज बागड़ी एडवोकेट, महेश बागड़ी आदर्श नगर पहाड़ा से, विकास सिंह जयपुर से, कुशाल बागड़ी मन बागड़ी सेक्टर नंबर 14 के श्रोता हैं, ललित सिंह चौहान काकरवा, हेमेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयर के श्रोता हैं, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलालवाटी के श्रोता हैं, इंदर सिंह जी राजावत सज्जनगढ़ रोड, दीपेश चौहान हाथीपुल के श्रोता, मुकेश जी चौहान बजरंगी भाई देबारी के श्रोता हैं, लाला भाई निमावत प्रताप नगर के श्रोता हैं, गोपाल भाई निमावत सुखेर से हैं, राजू भाई खींची मादड़ी से हैं और अंची निमावत देबारी से हैं, तनिष्क चौहान सूरजपुर कालिका माता चौक उदयपुर के श्रोता हैं। चलिए, बहुत से नाम आपने लिख डाले हैं। और अब जो अगला व्हाट्सएप हम आप तक जिनकी फरमाइश पूरी करना चाह रहे हैं वो हमारे श्रोता हैं उदयपुर रामदेव जी मंदिर से, मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, किरण ललित जी, अजय भावना, हेमलता विनायक जी, यशस्वी सिद्धि निष्ठा प्रतिष्ठा और उनके साथ हैं, सेक्टर 7 से चामुंडा माता मंदिर से हैं शांता देवी कुमावत, मनोज कुमावत और सुनील कुमावत धन्यवाद के साथ। साथ ही इनके साथ कला मार्ग से अमृत लाल जी, रेणु और रवि शंकर और हनुमान जी मंदिर से अशोक जी और सीता देवी, सूरज और तशु और हिनु भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो चलिए, आपकी फरमाइश पर ये गीत सिलसिला फिल्म से।

चलिए तो ये नोक झोंक भरा गीत आप सुन रहे थे और अब कुछ नाम और हम शामिल कर ले तो लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी कोमल, खेरातीवाड़ा, रंगीला, भेरू चौक से श्रोता हैं, शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमार मोहित चारभुजा, संदीप खेरातीवाड़ा के श्रोता हैं, विनोद जी कुमावत, नीलम कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत, कुमावत हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता, गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश, नवीन, लाल जी, श्रीनाथ मार के रातीवाड़ा के श्रोता हैं और किशोर, टेलर, जयंत राठौर और मालदार स्ट्रीट के हमारे श्रोता हैं। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का आया है जिन्होंने भी 2-3 बार मैसेज कर डाला है। चलिए नेक्स्ट जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है वो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार का आया है। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है एमबी कॉलेज कुम्हारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया, मोती चोटा कर जाली हाउस से माधव लाल सिल्ली घर से ये व्हाट्सएप आया है। कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति जोनी भाई कुल्लड़ वाले ये हमारे श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप जो हम तक पहुंचा है वो है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी का। ये जो व्हाट्सएप हम तक आया है ये है राधे राधे के साथ थैंक्स के साथ। ये व्हाट्सएप करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफजल और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहानी और मिसेस सुनीता सहानी का ये व्हाट्सएप आया है। चलिए अगली फरमाइश जो हम पूरी कर रहे हैं ये है हमारी श्रोता सविता पायल, पूनम, पुनीत, सिद्वेश, विनीता, राधा जी, मंजू जी, सुनीता जी, भोपालपुरा के श्रोता हैं, केएल रोड से ये श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश एक और श्रोता की आई थी जो कि गिरफ्तार फिल्म का गीत सुनना चाह रहे थे और वो श्रोता हैं रहमान कॉलोनी उदयपुर से रुखसाना बानो, मोहम्मद इद्रिस और मुस्तफ़ा रज़ा का। और साथ ही व्हाट्सएप कर रहे हैं अब्दुल सामद, फिरदीस बानो, मोहम्मद अरसालन, मोहम्मद रज़ा। इसी के साथ व्हाट्सएप आता है यस्मीन बानो, शबनम बानो, हुस्न बानो और फरहीन नाज का। आप सभी के लिए गिरफ्तार फिल्म का ये गीत।

चलिए तो धूप में ना चलने की हिदायत देता ये एकमात्र सॉन्ग है। चलिए अगला जो व्हाट्सएप हम शामिल करने वाले हैं वो है उदयपुर सेक्टर 9 से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय जिंगर, माधवी जिंगर, चुटकी, नसीराबाद, महेंद्र डाबी, ममता डाबी और किटू, आप सभी ने व्हाट्सएप किया है। अगला व्हाट्सएप जो हम शामिल कर रहे हैं वो है रानी खेरातीवाड़ा चौक, श्रवण कुमार, सुरेश कुमार का हम तक व्हाट्सएप पहुँचा है। ये व्हाट्सएप आया है हम तक दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का नमस्ते के साथ आपको भी नमस्कार। ये व्हाट्सएप आया है सलमा अटारी, खोजीमा अटारी, शुग्रा अटारी, संजीदा तबस्सुम, अलीशा कलकत्ता वाला, फोर खारोल कॉलोनी के श्रोता हैं। ये व्हाट्सएप आया है हम तक जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का। अगला व्हाट्सएप पहुँचता है भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्यन चौहान, तरुणा चौहान, एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री चौहान, पियान चौहान और आप सभी धन्यवाद के साथ ही व्हाट्सएप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है माहेश्वरी मोहल्ला मावली से गणपत विजयवर्गीय, भगवती, पुष्पाबेन, फेना गर्ग और समस्त विजयवर्गीय परिवार, बहुत शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप आया है मुकेश बडारिया, मामा जी, लाला राम जाटोलिया, दीप टेलर सेंटर एरिया उदयपुर, मुकेश बडारिया, रेगर कॉलोनी मावली गांव के श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप आता है मजनू का टीला कमल से, कमल बाबू बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का, और उन्होंने यही व्हाट्सएप फिर से किया है, शुक्रिया। अगला जो व्हाट्सएप आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का। तो चलिए अगली जो फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वो फरमाइश करता है उदयलाल, कुशल्या, रिया, खुशी, तेजस, कुलदीप, सुनीता उठवाल, धानमंडी उदयपुर के श्रोता हैं, साथ ही उदयपुर रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य हैं और वो सुनना चाहते हैं वंश फिल्म का ये गीत।

करता है उदय लाल, कौशल्या, रिया, खुशी, तेजस, कुलदीप, सुनीता ओटवाल, धानमंडी, उदयपुर के श्रोता हैं, साथ ही उदयपुर रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य हैं और वो सुनना चाहते हैं वंश फिल्म का ये गीत।

वाकई में बहुत ही खूबसूरत गीतों की फरमाइश उदयपुर आप करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमें इतने सारे नाम मिलते हैं तो हमें लगता है कि सभी के नाम आप तक पहुँचे तो हमें गीतों को फाइंड आउट करना ही पड़ता है। ये अगला नाम जो हम तक पहुँचा है वो है जेपी लिसनर क्लब से दर्शन सुहाल का, मेघा सुहाल का, धारावती सुहाल का, बालकृष्ण जी सुहाल का, आनंद विहार कॉलोनी, फौश कॉलोनी उदयपुर के ये श्रोता हैं। और इसके साथ श्याम मठफल उदयपुर, आनंद विहार सेक्टर नंबर 4 उदयपुर, सूर्य प्रकाश जी सुहाल का और सुहाल का अध्यक्ष हितेश सुहाल का ये नाम आया है, कमल कुमार सुहाल का साथ में भूपेंद्र मल्लारा, डॉक्टर संजय गांधी, चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा का भी नमस्कार के साथ हम तक व्हाट्सअप पहुंचा है। ये व्हाट्सअप आया है नरोत्तम जी गोड़, कमल कुमार नागर सुहाल का, परमानंद जी कुमावत, शारदा जी, मंजू जी कुमावत, आदरणीय भाभी जी, कौशल्या जी सुहाल का, और नाम आते हैं महिला श्रोता संघ के, और नरोत्तम जी गौड़, कमल कुमार नागर, परमानंद जी कुमावत, ठीक है ये हमने नाम ले लिए हैं। चलिए कुछ और नाम जो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और गायत्री मानिकपुरी और रानिक मानिकपुरी का, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री का हम तक व्हाट्सअप पहुँचा है, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा का हम तक व्हाट्सअप पहुँचा है। कुछ और नाम हम शामिल करें तो अमृतसर और लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के श्रोता हैं जो कि जिन्होंने भी फरमाइश की थी। और इसी के साथ अब हम जो फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं वो हमारे श्रोता हैं नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खरौल कॉलोनी, फतेहपुर, उदयपुर के श्रोता हैं जो सुनना चाहते हैं कन्यादान फिल्म का ये गीत। और उदयपुर वक्त बहुत कम है तो इसी गीत के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं, अशोक साधवानी, देवीलाल चौधरी, मोहन चौधरी, कृष्णा जी, हितेश, गौरव, कपिल खेलानी और भरत तेली, आबिदा खान पठान और सभी फ्रेंड्स हैं इनके। इसी के साथ संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत मकड़, कमल साहनी पिंगावाड़ा चौक के हमारे श्रोता हैं, शब्बीर इटारसी, रुबाब बानो बोरवाड़ी के श्रोता हैं, ये व्हाट्सअप हम तक पहुँचा है मालदा स्ट्रीट से मंजू सैन और अशोक जी सैन का। अगला व्हाट्सअप आया है पुष्पा शर्मा, राजकुमार शर्मा, बाबेला जी की सिहरी से। और इसका अगला व्हाट्सअप आया है श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत और रजत कुमावत का। अगला व्हाट्सअप पहुंचा है हम तक रामपुरा से सुधा रानी वैष्णव का। और इसके बाद राजकुमार डूंडी, प्रमोद डूंडी,

पुष्पेंद्र कुमार डोंडी का भी गांव फरासी जिला हिसार से हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है। रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पवार, पिंकी मनस्वी, चैतन्य कीर्ति के प्रभात नगर हिरण बगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। राजेंद्र नागर, अंजू नागर, मोहित नारंग और तानिया नारंग, अंजू नारंग और राजेंद्र नारंग भटिंडा रोड मंडी डब्वाली के श्रोता हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। फिलहाल लिसनर्स चॉइस इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत है। इजाज़त दीजिए रश्मीत को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का व्हाट्सएप करने का। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स। अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से और जोड़ते हैं वहां से और सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
2: सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना शब्बीर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे

0: साथ वॉकथॉन पर
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं।

0: सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली
2: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत है राजेश रोशन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।

ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो,

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी

0: भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये मालिक जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड।

ये है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जाना चाहती हूँ, तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा

होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है। बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा। विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा। फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने, कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है, तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है। तो आप किसी शादी समारोह में गए, कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रही है कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्मपत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा, साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा, मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर

चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं, तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है।

एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मजेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक केप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, वज्रो सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

या परिणय सूत्र भी कहा जाता है। शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में 2 जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनंद फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

से आया मेरा दोस्त hey, hey! दोस्त को सलाम करो hey, hey! रात को खाओ पियो hey, hey! दिन को आराम करो hey, hey!

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं, एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है, वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नील कमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ किसी के यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

बात आदि है, कहीं तेरी मेरी बात भी आदि न।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए, मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है, जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 27वीं कड़ी।

0: 7 अगस्त 1905, ये वो दिन था जब कलकत्ता के टाउन हॉल के विशाल प्रांगण में संपन्न 4 बड़ी बड़ी सभाओं में वंदे मातरम इन शब्दों का पहली बार सार्वजनिक सामूहिक जयघोष हुआ। और अगले मात्र 2 महीनों में ये युद्धघोष बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। केवल 2 महीनों में वंदे मातरम ये शब्द प्रत्येक बंगाली व्यक्ति के मुख से निकलने लगे। 16 अक्टूबर 1905 वो दिन आ गया जिस दिन विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त से भी बड़ी सभा अब होने वाली थी। उससे पहले सभा में आने वाले सभी लोग एकत्रित होकर जुलूस के साथ सभा स्थल पर जाने वाले थे। सभा में जाने से पहले जनता ने और भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने का निश्चय किया था जिससे जनता की एकता और वंदे मातरम की शक्ति का संयुक्त परिणाम ब्रिटिश सत्ता को अच्छी तरह महसूस हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह वंदे मातरम का जयघोष करते हुए गंगा की दिशा में चल पड़ा।
1: गंगा स्नान के बाद सभी लोग एक दूसरे को राखी बांधने वाले थे। उन सब के आगे रविंद्रनाथ पैदल चल रहे थे। उस दिन ठाकुर परिवार के सभी नौकर, मुनीम और मालिक बराबरी से बिना किसी घोड़े गाड़ी के पैदल ही चल रहे थे। दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। किसी

0: उत्सव जैसा माहौल बन गया था। सामने जगन्नाथ घाट था। रविंद्रनाथ के साथ लोगों ने गंगा में स्नान किया और सबने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद बिडन स्क्वायर में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाथुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया चितपुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधें। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदरपूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवा ली। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वयं स्फूर्त बंद रखा गया।
1: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग बिडन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले,
2: समस्त बंगालवासियों की भावनाओं की अवहेलना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया है, इसलिए आज हम सभी शपथ लें कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है वो करेगा।
0: इस सभा में 50,000 लोग उपस्थित थे। इस दिन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर रचित वो गीत प्रार्थना के रूप में गाया गया जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध

इस सभा के आयोजन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का बड़ा योगदान था, जो भारतीय न होते हुए भी मात्र 5 वर्षों में पूरी तरह भारतीय हिंदू बन चुकी थीं। यह सभा समाप्त होने पर सर्कुलर रोड पर एक और बड़ी सभा हुई। अखंड बंग भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ ली। इस सभा में 75,000 रुपयों का राष्ट्रीय निधि इकट्ठा हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन में आम जनता के साथ युवा छात्र वर्ग भी शामिल होने लगा। बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कार्लाइल सर्कुलर नामक कुख्यात सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी स्वदेशी की सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा, उसे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस सर्कुलर से छात्रों में दहशत फैलने की बजाय और अधिक संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में भाग लेने लगे।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज बंद करवा दिए और ये इमारत किराए पर देना है, इस आशय के पोस्टर विश्वविद्यालय की दीवारों पर चिपका दिए। रंगपुर के एक विद्यालय के 200 छात्रों को वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए प्रत्येक को ₹5 का जुर्माना भरना पड़ा।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 27वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पात्रीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, गायक कलाकार अपर्णा केड़कर, पार्थ उमराणी, देवव्रत भातखंडे और पद्मजा लामरूट, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
1: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
4: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज

डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय

0: दलितों द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ

0: उठा सके।
1: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक

0: गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: तो जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
2: हाँ, एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
1: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
2: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या

0: कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो
1: मैं
0: ये
1: वहीं से करती।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से, क्या बात है। तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त? हो गया होगा तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही
1: क्योंकि
0: कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही
0: सही।
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह, ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आर्किया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सिटी की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा सके, नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के, और इंदौर का तो जो भोजन है खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया। तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है इस दिल का नहीं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का कैसा मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सिंधरिया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से जी। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ,
1: किया और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनना चीज यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से। क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है,
1: अच्छा,
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं। तो अभी भी
0: जी
1: उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: टाइप से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं नहीं
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं
0: जी
1: जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की, कि
0: क्या बात है।
1: वो जैसे बोलती थी थई जोर से मारो तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाएं तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिकदा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिकदा दिक टिक थई, टिकदा दिक टिक थई, टिकदा दिक टिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आजमी।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी, उज्जैन उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में
1: अच्छा था और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप? खेती
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत पे ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कौन चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहां पे पशु भी हैं?
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहां पे पशु भी
1: हाँ है ना,
0: हैं?
1: है भैंस वैस है, भैंस
0: क्या है वहां पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहां?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे? तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने
1: बच्चों
0: बच्चों की तरह।
1: की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके, बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं। फिर
0: जी तो थककर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: वो
0: होता
1: वहाँ
0: होगा।
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के चला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा
1: जी,
0: जी
1: मध्य प्रदेश।
0: जी, क्या
1: जी
0: कर रही
1: मैम।
0: थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो
1: सच्ची
0: बहुत अच्छी बात
1: सहेली,
0: है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार ना एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो
0: जी।
1: वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। बोल
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलंग वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी, मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी, आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी।
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी, मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना,
0: जी
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी, फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही हैं।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा। फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी। झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो, जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे, वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है। ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए।

सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसके निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं।

बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी मेरी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजाकर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

ने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफदेह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। ओस में भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी मां के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने

पैर से कसकर लिपट जाते, जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती। मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भनरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्या।
1: और मैं हूं हर्षित। आने वाले कुछ पल में हम लेकर आए हैं इतिहास, संगीत, खेल और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से जुड़ी कई खास बातें।
0: बिल्कुल दोस्तों, हर दिन अपने साथ कुछ नई कहानियां, नई यादें और इतिहास के कुछ अनमोल पन्ने लेकर आता है।
1: और 8 मई भी एक ऐसा ही खास दिन है जिसने दुनिया को कला, संस्कृति, खेल और मानवता से जुड़े कई यादगार पल दिए हैं।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, बात करेंगे महान कलाकारों और खिलाड़ियों की और सुनेंगे उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ जिन्होंने अपने काम से दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है।
1: तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत और ज्ञानवर्धक सफर के लिए, जहाँ इतिहास की गूंज होगी, संगीत की मिठास होगी और प्रेरणा की नई उड़ान भी।
0: तो सुनते रहिए युवाणी, क्योंकि यहाँ हर आवाज़ में बसती है भारत की पहचान।

FM बैंड 101.9 MHz पर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी हमारे मीडिया वेव चैनल से।

0: तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसने फैशन और सोच दोनों को बदल दिया है।
1: बिल्कुल दिव्या, हम बात कर रहे हैं फॉक्स लेदर की। आज की युवा पीढ़ी इसे सिर्फ पहन नहीं रही बल्कि इसे एक स्टेटमेंट बना रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग असली लेदर को के पीछे भागते थे, लेकिन अब क्रुएल्टी फ्री होना ही असली स्वैग बन गया है।
1: यही तो है कि जनरेशन जेड की ताकत है दिव्या। हम स्टाइल के लिए किसी भी बेजुबान को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं करते।
0: और तो और, इसका बजट एकदम पॉकेट फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल कम कीमत में शानदार फैशन लुक, कॉलेज हो या पार्टी, आप हमेशा सबसे आगे रह सकते हैं।
0: वैसे हर्षित, क्या आपने इसके रंग देखे हैं?
1: नहीं,
0: नियॉन से लेकर पेस्टल तक इसमें सब कुछ संभव है।
1: वही तो, असली लेदर में तो सिर्फ भूरे और काले रंग ही मिलते थे, यहाँ विकल्पों की कोई कमी ही नहीं है दिव्या।
0: और इसकी देखभाल कितनी आसान है, बारिश हो जाए या कुछ गिर जाए, बस एक बार साफ कीजिए और काम खत्म।
1: हम जैसे हमेशा भागदौड़ में रहने वाले लोगों के लिए तो सिर्फ एक ये वरदान से कम नहीं है दिव्या। घंटों पॉलिश करने का झंझट ही खत्म हो जाता है इसकी वजह से।
0: बिल्कुल, लेकिन हर्षित, क्या आपको पता है कि अब यह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बन चुका है।
1: हाँ बिल्कुल, भारत के यंग एंटरप्रेन्योर सब फैक्ट्स और ये जो कैक्टस होता है, पाइनएप्पल और इन सब से लेदर बना रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नवाचार है।
0: यही तो मेक इन इंडिया का नया चेहरा है, कचरे से वर्ल्ड क्लास फैशन बनाना।
1: इसका मतलब है ज़्यादा नौकरियाँ और हम जैसे युवाओं के लिए स्टार्टअप के नए अवसर।
0: और पर्यावरण का क्या? असली लेदर की टैनिंग ने में जितना पानी बर्बाद होता है, फॉक्स लेदर उससे कहीं ज़्यादा साफ और बेहतर विकल्प है।
1: सही बात है दिव्या, यानी हम स्टाइलिश भी दिख रहे हैं और अपनी धरती का ख्याल भी रख रहे हैं।
0: हर्षित, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में असली लेदर पूरी तरह से भारत बाहर हो जाएगा?
1: दिव्या, जिस तरह युवा पीढ़ी सस्टेनेबिलिटी को अपना रही है ना, मुझे तो ये लगता है कि दिव्या अब चुनाव और सिर्फ फैशन का ही नहीं है बल्कि एथिक्स का भी होने लगा है। लोगों को एथिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
0: बिल्कुल, अब लोग टेक पढ़ते हैं, उसका सोर्स देखते हैं। हम एक जागरूक पीढ़ी हैं
1: और यही जागरूकता इस उद्योग को अरबों डॉलर का बना सकती है। भारत इसमें ग्लोबल लीडर बन सकता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप खरीदारी करें तो याद रखिए, आपका एक छोटा सा फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बी बोल्ड, बी स्मार्ट, सस्टेनेबल फैशन ही भविष्य है।

0: तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत माता के उस वीर सपूत की जिसने अपने अदम्य साहस और देशभक्ति से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी, लांस नायक लक्ष्मण गुरुंग।
1: लक्ष्मण गुरुंग केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वे वीरता, त्याग और अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण थे।
0: श्रोताओं, लक्ष्मण गुरुंग का जन्म 30 दिसंबर 1917 को नेपाल के तन्हो जिले के दाहाखानी गांव में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे लक्ष्मण बचपन से ही मेहनती और साहसी थे। उस समय गोरखा सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। बचपन से ही लक्ष्मण के मन में सेना में जाने और देश सेवा का सपना था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल में भर्ती ली।
1: गोरखा सैनिकों का नाम सुनते ही दुश्मनों के मन में डर पैदा हो जाता था। उनकी पहचान थी अनुशासन और बहादुरी। दोस्तों, यह वह समय था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी।
0: भारत के हजारों सैनिक अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे थे, इन्हीं में शामिल थे लक्ष्मण गुरुंग। सन 1945 में बर्मा यानी आज के म्यांमार में जापानी सेना के खिलाफ भीषण युद्ध चल रहा था।
1: यही वह युद्ध था जिसमें लक्ष्मण को अमर बना दिया। 12 और 13 मई 1945 की रात बर्मा के तोंगदाव क्षेत्र में भारतीय सेना मोर्चा संभाले हुए थी।
0: जापानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे, स्थिति बेहद गंभीर थी। लक्ष्मण गुरुंग अपनी पोस्ट पर तैनात थे, तभी दुश्मनों ने अपनी ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया।
1: पहला ग्रेनेड उन्होंने तुरंत उठाकर वापस दुश्मन की ओर फेंक दिया। दूसरा ग्रेनेड भी उन्होंने वापस फेंक दिया, लेकिन तीसरा ग्रेनेड जो था वो उनके हाथ में ही फट गया।
0: विस्फोट इतना भयानक था कि उनका दाहिना हाथ लगभग नष्ट हो गया। चेहरे और शरीर पर भी गंभीर चोटें आई। सोचिए दोस्तों, इतना भयानक चोट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद लक्ष्मण गुरुंग ने अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दिया।
1: उन्होंने केवल एक हाथ से राइफल संभाली और लगातार दुश्मनों पर गोलीबारी करते रहे। पूरी रात उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। जापानी सैनिक बार बार हमला करते रहे, लेकिन लक्ष्मण चट्टान की तरह उनके सामने डटे रहे।
0: सुबह जब युद्ध समाप्त हुआ, तब उनकी पोस्ट के सामने दुश्मनों के कई सैनिक मृत पड़े थे। कहा जाता है कि उनकी बहादुरी की वजह से दुश्मन उस पोस्ट पर कब्जा भी नहीं कर पाए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार यानी विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। विक्टोरिया क्रॉस मिलना किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।
0: यह सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो असंभव परिस्थितियों में भी असाधारण साहस दिखाए देते हैं।
1: और लक्ष्मण ने साबित किया कि देखो, सच्चा सैनिक कभी भी हार नहीं मानता।
0: तो दोस्तों, गोरखा सैनिकों की वीरता की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: एक कहावत भी है दिव्या, अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है।
0: यह बात बताती है कि गोरखा सैनिकों का साहस कितना अद्भुत माना जाता था।
1: युद्ध के बाद लक्ष्मण को सेना ने संपूर्ण सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्ति ली। आज के युवाओं के लिए लक्ष्मण की कहानी बहुत ही बड़ी प्रेरणा है।
0: आज जब छोटी छोटी मुश्किलों में लोग हार मान लेते हैं, तब उनका जीवन हमें संघर्ष करना सिखाता है।
1: उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
0: तो दोस्तों, देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है।

0: दोस्तों, और अब हम बात करेंगे संगीत की दुनिया के दो ऐसे सितारों की जिन्होंने अपनी अलग-अलग शैली से दुनिया भर के लोगों को दिलों में एक जगह बना दी।
1: बिल्कुल, एक तरफ है भारत के मशहूर पॉप और इंडी म्यूजिक आइकन रेमो फर्नांडिस, जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नया अंदाज दिया।
0: और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन एनरिक एग्लिसियास, जिनकी आवाज़ और रोमांटिक गानों ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया।
1: दोस्तों, संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। चाहे गोवा की मस्ती हो या स्पेनिश रोमांच, अच्छे संगीत की धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। रेमो फर्नांडिस और एनरिक इग्लेसियस दोनों अलग देशों और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन दोनों ने अपने संगीत से लोगों को जोड़ने का काम किया है।
0: बिल्कुल दिव्या, एक कलाकार अपनी आवाज़ से सिर्फ गाने नहीं गाता बल्कि

0: भावनाएं बांटता है। रेमो फर्नांडिस ने भारतीय युवाओं के लिए एक नया म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट दिया, वहीं एनरिक इग्लेसियास ने रोमांटिक पॉप म्यूजिक को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं रेमो फर्नांडिस की। तो उनका जन्म गोवा में हुआ और उनका पूरा नाम लुइस रेमो डी मारिया बर्नार्ड फर्नांडिस है। गोवा की संस्कृति, वहाँ का संगीत और समुद्र किनारे की खुली जिंदगी, इन सब का असर उनके संगीत में साफ दिखाई देता है।
0: हाँ, और यही वजह है कि उनके गानों में एक अलग तरह की आज़ादी और ऊर्जा महसूस होती है। उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी और कोंकणी भाषा में भी कई शानदार गाने गाए। उस समय भारत में पॉप म्यूज़िक उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन रेमो ने इस शैली को लोगों तक पहुंचाने का साहस किया।
1: बिल्कुल, रेमो फर्नांडिस की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने हमेशा भीड़ से अलग रास्ता चुना। जब लोग पारंपरिक फिल्मी संगीत सुन रहे थे, तब रेमो ने नए बीट्स, नए इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ प्रयोग कर रहे थे।
0: बिल्कुल, उनके गानों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था बल्कि समाज के मुद्दों पर भी बातें होती थी। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा। यही कारण है कि उनकी पहचान एक थिंकिंग म्यूजिशियन के रूप में भी बनी।
1: दोस्तों, अगर हम उनके लोकप्रिय गानों की बात करें तो द हम्मा हम्मा को शायद ही कोई भूल सकता है। यह गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो रहता है।
0: और ख़ास बात यह है कि रेमो की आवाज़ में एक अलग ही जोश और स्टाइल था। वे मंच पर आते थे तो पूरा माहौल जीवंत हो जाता था। उनके गानों में गोवा की मस्ती, समुद्र की खुली हवा और युवाओं की आज़ादी महसूस होती थी।
1: इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया और कई सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखी। उसके अलावा उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2007 में भारत सरकार के द्वारा।
0: अब बात करते हैं एनरिक इग्लेसियास की, तो उस कलाकार की जिसे किंग ऑफ लैटिन पॉप भी कहा जाता है, एनरिक इग्लेसियास। एनरिक का जन्म स्पेन में हुआ और वे मशहूर गायक जूलियो इग्लेसियास के बेटे हैं।
1: लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिता की पहचान का सहारा लेकर सफलता हासिल नहीं की। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर खुद को साबित किया। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी असली पहचान तक छुपाई थी।
0: बिल्कुल, एनरिक ने शुरुआत छोटे स्तर से की। उन्होंने रिकॉर्ड कंपनियों को अपने गाने भेजे और धीरे धीरे लोगों ने उनकी आवाज़ को पसंद करना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही भावनात्मक गहराई थी।
1: और फिर आया वह दौर जब हीरो, एस्केप और बेबी आई लाइक इट जैसे गानों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। उनकी लोकप्रियता सिर्फ अंग्रेजी गानों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्पेनिश गानों को भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई।
0: 2000 के दशक में शायद ही कोई ऐसा युवा रहा हो जिसने एनरिक इग्लेसियास के गाने न सुने हों। उनके रोमांटिक गाने लोगों के दिलों की आवाज़ बन गए थे।
1: बिल्कुल सही कहा, उनके गानों में प्यार, जुदाई, उम्मीद और भावनाओं का ऐसा मिश्रण होता था कि लोग खुद को उनसे जोड़ लेते थे। यही वजह है कि उनका संगीत हर पीढ़ी में लोकप्रिय बना रहा है।
0: दोस्तों, आज के समय में संगीत बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इन नए कलाकार आ रहे हैं, लेकिन नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल, रेमो फर्नांडिस और एनरिक इग्लेसियस ऐसे ही कलाकार हैं जिनके गाने आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने पहले होते थे।
0: और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसका संगीत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।

0: दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल सुरों और तालों का संगम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और हमारी भावना और हमारी आत्मा की पहचान भी है।
1: बिल्कुल दिव्या, हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे अनगिनत कलाकारों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने संगीत से समय को भी थाम लिया है। उनके सुर आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं।
0: कुछ कलाकार अपनी कला से सिर्फ मंच नहीं सजाते, बल्कि पूरी परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही दो महान संगीत साधकों की, जिनकी साधना और संपूर्ण संपर्णा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अमर बना दिया।
0: और एक तबले की अद्भुत तालों के जादूगर पंडित ज्ञान प्रकाश घोष,
1: और दूसरी ओर ठुमरी को नई पहचान देने वाली सुरों की महान साधिका विदुषी गिरिजा देवी। अब बात करते हैं सबसे पहले पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी की। तो इनका जन्म 8 मई 1909 को कोलकाता, बंगाल के एक बेहद संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था।
0: सही कहा हर्षित। फरुखाबाद घराने के वे ऐसे संगीत मार्तंड थे जिन्होंने हारमोनियम से संगीत की शुरुआत की और आगे चलकर तबला वादन के बेताज बादशाह बने।
1: इन्हें फरुखाबाद घराने का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1984 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों को प्राप्त किया।

0: किया।
1: उन्होंने पंडित अनिंदो चटर्जी और पंडित अभिजीत बनर्जी जैसे महान कलाकारों को तैयार किया। उनका मानना था कि संगीत केवल ताल और बीट्स नहीं बल्कि एक भाषा है।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि संगीत में सादगी और समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। 23 दिसंबर 1997 को यह महान कलाकार हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ताल आज भी जीवित है। ज्ञान प्रकाश जी की तालों के बाद अब समय होता है उस आवाज़ की जिसने बनारस की मिट्टी को आकाश जितनी ऊंचाई दी। लेकिन हम बात करेंगे एक प्यारे से गीत के बाद।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे विदुषी गिरजा देवी के बारे में। सुरों की रानी और बनारस की शान विदुषी गिरजा देवी, जिन्हें दुनिया प्यार से अप्पा जी कहकर पुकारती है। ठुमरी शैली में उनके योगदान के लिए उन्हें क्वीन ऑफ ठुमरी से भी संबोधित किया जाता है।
1: दोस्तों, जब गिरजा देवी जी गाती थी तो ऐसा लगता था मानो गंगा की लहरें सुरों में ढल गई हो। अप्पा जी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। बनारस घराने की यह महान शान हमेशा अपने शहर और अपनी मिट्टी से जुड़ी रही।
0: उन्होंने ठुमरी, दादरा और चैती जैसी शास्त्रीय गायन शैलियों को ऐसा सम्मान दिलाया कि आज पूरी दुनिया में उनकी गूंज सुनाई देती है। उनका सम्मान और योगदान सचमुच अद्भुत था।
1: बिल्कुल दिव्या, उन्हें पद्मश्री मिला था 1972 में, पद्म भूषण मिला 1989 और फिर पद्म विभूषण 2016 में, जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उनके नाम रहा।
0: बिल्कुल, गिरजा जी कहा करती थी कि संगीत बिना भाव के अधूरा है। 24 अक्टूबर 2017 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी ठुमरी आज भी हर दिल को छू जाती है।
1: उनका पूरा जीवन संगीत की तपस्या था। संगीत सुनते रहिए और अपनी इस महान सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कीजिए।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं आज यानी 8 तारीख 8 मई के न्यू रिलीजेस पर। दादी की शादी थिएटर में प्रदर्शित होगी। आशीष आर मोहन द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा जिसमें रिधिमा कपूर, साहनी ने निवेदन किया है और उनके साथ नीतू कपूर और कपिल शर्मा भी हैं।
1: इसके बाद है मैं हीरो नहीं हूँ, थिएट्रिकल मूवी है। आदित्य कृपलानी द्वारा निर्देशित एक नाटक जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और चित्रांगदा सतरूपा है।
0: एक और है जो कि OTT पर रिलीज होगी, लुक्खे। रैपर किंग अभिनीति एक संगीतमय एक्शन ड्रामा जिसकी कहानी चंडीगढ़ के अंडरग्राउंड संगीत जगत पर है आधारित है। अमेज़न प्राइम पर आप देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बात थी न्यू रिलीज मूवीज के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की। तो दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता, बल्कि एक संघर्ष, अनुशासन और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून की कहानी भी होती है।
0: बिल्कुल दिव्या, हमारे देश ने ऐसे कई खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है।
1: कुछ खिलाड़ी मैदान में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ अपनी रफ्तार से इतिहास लिख देते हैं।
0: और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही दो महान खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने खेल से करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया है।
1: एक और भारतीय हॉकी की मजबूत दीवार PR श्रीजेश,
0: और दूसरी ओर भारतीय एथलेटिक्स की तेज रफ्तार पहचान शाइनी अब्राहम विल्सन।
1: तो दोस्तों बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने गोल पोस्ट के सामने खड़े होकर विरोधियों की हर उम्मीद को रोक दिया।
0: दोस्तों, पार्थ रविंदर श्रीजेश यानी हमारे प्यारे श्रीजेश, इनका जन्म 8 मई 1978 को केरल के कोच्चि में हुआ था।
1: केरल के एक किसान परिवार से निकलकर भारतीय हॉकी टीम की दीवार बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
0: श्रीजेश ने भारत को टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक यानी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शानदार बचाव कला ने पूरे देश को गर्व से भर दिया।
1: इसी अदम्य जज्बे और योगदान के लिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, पद्मश्री 2017 और वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर जैसे सम्मान प्राप्त हुए।
0: उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान हर मुश्किल को रोक सकता है।
1: श्रीजेश का जज्बा हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। सचमुच में वे एक खिलाड़ी हैं, एक महान खिलाड़ी हैं।

0: श्रीजेश के जज्बे के बाद हम चलते हैं हॉकी के मैदान पर। हॉकी के मैदान पर दीवार को देखने के बाद अब समय है उस रफ्तार की बात करने की जिसमें एशियन गेम्स में भारत का परचम लहराया।
1: एक ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया, मिडिल डिस्टेंस रनिंग की रानी शाइनी अब्राम विल्सन, ट्रैक की रानी और नए रास्तों की खोज शाइनी अब्राम विल्सन।
0: दोस्तों, जब भी भारतीय एथलेटिक्स की बात होती है तो शाइनी अब्राम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। शाइनी जी का जन्म 8 मई 1965 को केरल के थोडुपुझा में हुआ था। वे भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा।
1: उन्होंने 800 मीटर दौड़ में जो रफ्तार दिखाई उसने एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया जो 14 वर्ष तक कायम रहा।
0: दोस्तों, उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला 1984 में और पद्मश्री 1998 से सम्मानित किया गया। साथ ही 1991 की एशियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: शाइनी जी ने यह साबित किया कि महिलाओं के लिए खेल के मैदान में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। वे एक ऐसी प्रेरणादायक खिलाड़ी थीं जिन्होंने 1992 बर्सिलोना ओलंपिक में भारत का ध्वज थामा था।
0: उनका सफ़र हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने से डरती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, सिर्फ दौड़िए मत बल्कि अपने सपनों को उड़ान दीजिए।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। वर्ष 1360 यानी आज ही के दिन को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ब्रेटिकनी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल के युद्ध के पहले चरण का अंत हुआ। यह युद्ध सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि सत्ता और सम्मान की लड़ाई भी थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था।
0: 8 मई 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरल सागर का युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध अमेरिका और जापान के बीच लड़ा गया था और

0: से इतिहास की पहली ऐसी समुद्री लड़ाई माना जाता है जिसमें दोनों देशों के जहाज एक दूसरे को सीधे देख भी नहीं पाए।
1: दोस्तों, 1945 विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। इसी दिन नाजी जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस दिन को विक्ट्री ऑफ यूरोप डे यानी VE Day के रूप में मनाया जाता है।
0: 1970 को दुनिया के मशहूर बैंड द बिटल्स ने अपना आखिरी एल्बम लेट इट बी रिलीज किया। बिटल्स ने सिर्फ एक म्यूजिक बैंड नहीं था, बल्कि युवाओं की सोच और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। निफ्टी 50 आज लगभग 150 अंकों की गिरावट के साथ 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE सेंसेक्स करीब 1,516 अंक टूटकर 77,328 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में दिखाई देने को मिला है।
0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित और

0: पर कारोबार करता दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में दिखाई देने को मिला है।
1: तो दोस्तों, अब वक्त शो हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थे
0: दिव्या,
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण

समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। हमारे इवनिंग लोकल विंडो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत और आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं विजयलक्ष्मी। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करिए जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई खुश हो जाता है। जी हाँ, आप

की खुशियों को बढ़ाने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम, और उन्हीं में से एक ही है फिल्म संगीत। सबसे पहले सभी से हो जाए नमस्ते कुछ इस अंदाज में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। जमाना कहता है इश्क जिसे, शायद तुमसे वही बात हो गई। जी हाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पर जब किसी अजनबी से मुलाकात हो और उसे देखते ही अपनापन सा लगे, तो दिल यही कहता है

जब अजनबी से मिलकर दिल को खुशी मिलती है तो साथ ही मिलती है दिल को बेचैनी, बेकरारी। ऐसे में दिल बेवजह धड़कने लगता है।

अजनबी पर भरोसा करके अपने दिल की बात बताना तो चाहते हैं, पर दिल में अजीब सी झिझक टीस सी रहती है। इस वजह से बस दिल ही दिल में अपनी चाहत रखते हैं, पर चाहत तो दिल में कहाँ दबी रहती है, इसीलिए कहना ही पड़ता है।

अपने प्यार का इजहार हो जाए अपने प्यार से, तो अपनी बातों में यह भी कहा जाता है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, कहना बहुत कुछ चाहता था, पर झिझक के कारण एक दूसरे से अपनी बात अभी तक नहीं कह पाए। पर आज पहली बार अपने दिल की बात पूरी शिद्दत से कह देते हैं, कुछ इस तरह।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्यार शायद ऐसा ही होता है कि जब दिल की बात बता दी जाए तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, नाराज़ होना स्वाभाविक हो जाता है। तब यह बात लड़ते झगड़ते रूठते एक दूसरे को प्यार से चिढ़ाते हुए कह दी जाती है।

अपने प्यार का साथ पाकर दिल खुशी और उमंग से भर जाता है। अपने दिल का हाल बयां करके दिल को सुकून मिलता है। अपने साथी से कहा जाता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार है। कितना है प्यार, बस ये मत पूछना। आप सब सुनिए फिल्म संगीत का ये आखिरी नगमा और दीजिए इजाज़त विजयलक्ष्मी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसी के साथ हमारी इवनिंग लोकल विंडो भी यहीं समाप्त होती है। FM बैंड 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी उदयपुर है, FM रेडियो लेक सिटी। संध्या के 7 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के साथ अब से लेकर रात 11 बजे तक। सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला।
1: ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रस्तुत है जयमाला।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है।

0: अभी आपने देशभक्ति गीत सुना, आवाजें एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की थी, गीतकार समीर, संगीतकार एआर रहमान। लीजिए सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: கடற்படை கட்டணா ஸ்வயம் கடற்படை பாரதிய சேனா।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के थे। लीजिए अब सुनिए प्रेम रोग फिल्म में सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर को पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमागा की, फिल्म का नाम निकाह।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अनजान का लिखा गीत, फिल्म है महान, आवाज़ें आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जयमाला के शेष गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जयमाला कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया राजा फिल्म का गीत, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।

0: एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाजें सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सौदागर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत पेशे खिदमत है कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: विविध भारती पर पेश है

आप सुनिए काफिला जर की लिखी गजल राजकुमार रिजवी ने, हैं इसके फनकार।

0: इस गजल के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहां, उहां, उहां।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहां, उहां, उहां, उहां।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
2: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
0: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साठ लेकर आने का मैं अंदर है।
0: राइट डॉक्टर, साठ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
4: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
0: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया, ये गया वो आया, वो गया ये आया।
5: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़ी जल्दी में हैं क्या?
0: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए, ये गया वो आया, वो गया ये आया।
5: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
4: शायद अंदर ही हैं।
5: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचीज को वर्मा कहते हैं
4: और मुझे कुमार।
5: ओ कुमार, आपके कितने साल?

0: साधे हैं कुमार साहब
1: जी। अभी तक तो
0: समझ गया तो आपका पहला तजुर्बा है
1: जी आपका।
0: अजी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे चार गिनती पांच।
1: पांच
0: क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
1: लक की प्लानिंग?
0: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हम।
1: आपका लक खुला।
0: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
1: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
0: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
1: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
0: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के माफिक के लिए फोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपनी मिसेज को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगज मारी? अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड क्या मगजमारी। अरे बाबा पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं मरीज है। मरीज
1: है? अच्छा अभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब?
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस डॉक्टर पालनावाला स्पीकिंग। व्हाट? मिसेस पालनावाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा अच्छा हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। पहला आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगज मारी है? ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला? आने की हालत में नहीं? पर बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है? पर हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और बढ़ा दो, मिसेस पालना वाला। फालतू मगज मारी ओच महिला मंडल। अरे महिला मंडल।
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर।
0: सबर करो नहीं जरा।

0: बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा।
1: वो कौन?
0: अब बोलो, तुमको इतना भी नहीं मालूम?
1: नहीं।
0: वो परिस्तान की हूर है, मेरे मन की रानी है, दिल को घायल करने का मसाला है। रोजी उसका नाम है, गाल पे तिल पहचान है।
1: अच्छा।
0: रोजी अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के।
1: कैसे?
0: अरे मेरे ब्रादर, डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार।
1: अच्छा।
0: आया धनवंती का आदि भाग गया, वो गई काम से। अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़ी आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं।
0: लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है।
1: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस।
0: अभी तुम जाओ।
1: अच्छा।
0: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ, एक घंटे के बाद आऊँगा।
2: जोसेफ?
0: यस डॉक्टर।
2: ओ आई नहीं?
0: जी नहीं, फिर जाऊँ?
2: क्या मगज मारी किडर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया।
0: वो आएगी, इन हो जाएगा।
2: ओ शट अप।

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर फिल्म का गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में तर्ज बनाई है शांतनु मोइत्रा ने बोल विधु विनोद चोपड़ा के।

अंतरा मित्रा और श्रीराम को अब सुनिए 1920 लंदन फिल्म में। बोली के हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए हिमेश रेशमिया का गाया और उन्हीं का संगीत बद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, वो लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुबिन नौटियाल की, फिल्म का नाम काबिल।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी उदयपुर है, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार संध्या और 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी में न्यूज़ 8:09। हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा इन्हें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत

0: आनंद कर। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी

0: उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है, इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी। कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति

0: राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,100

0: मिलेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस।

धरती कहे पुकार के। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचनाकार हैं मचेरू सुल्तानपुरी।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अब सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म बहू बेगम में साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है रोशन ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम अब से बस कुछ ही पलों के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें।
5: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य

परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है?
2: मैं आऊं विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान विष्णु
1: इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए।
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
1: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
1: बस बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब
1: क्या काम? नहीं तेरी मेम साहब है जिससे तू?
5: नहीं

0: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब पुकारते
1: हैं।
0: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया, क्या?
2: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
3: तुम?
4: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
5: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
2: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
6: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है। और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे, खयाम साहब जो मेरा

0: याम
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

श्रोताओं नमस्कार। छाया गीत के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा। वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने। ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन, लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना, तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चिच्चोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारें बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को? होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

शायद यही तो है प्यार का असर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। याद में उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम

0: मौके मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी इन द स्टेट इलेक्टेड हिम द लीडर इन अ मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता टुडे, पेविंग द वे फॉर हिम टू बिकम द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.